de. Agora. চল্লিশ মিনিট হয়ে সেকেন্ড আচ্ছা এবার গীত

0: আকাশবাণী কলকাতা, গীতাঞ্জলি। একটু পরে সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে সংবাদ।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মাই মনোজ। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ तस्करी, अवैध वित्तीय लेन देन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये बैठक आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बंगाल की खाड़ी, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में कल दिल्ली संवाद को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत की औसत आयु 30 वर्ष से कम है। अगले 3 दशकों तक इसके 30 वर्ष से कम रहने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को जारी की गई थी। नई समय सीमा के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद कल अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल है। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए हैं, जिनमें स्वचालित हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक शामिल हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित करेगा। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाला ये मेला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1,500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। मेला इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। भारत और ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के बीच क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवीनतम घटनाक्रमों और परस्पर हित के मुद्दों पर बातचीत

ঠুমরি শুনছেন শিল্পী পণ্ডিত লক্ষ্মী শঙ্কর, এখন ভৈরবী ঠুমরি।

श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड के अंतिम चरण में राम कथा का वो प्रसंग आता है जहां श्री राम और लक्ष्मण पंपा नामक सुंदर सरोवर के तीर पर पहुंचते हैं। गहरे सरोवर में रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं जिन पर मधुर स्वर में भौरे गुंजार कर रहे हैं। चक्रवाक बगुलों तथा जल निवासी पक्षियों का समूह देखते ही बनता है। इसी सरोवर के आसपास मुनियों के आश्रम हैं, जहां अनेक प्रकार के वृक्षों तथा लताओं ने अद्भुत सुषमा बिखेर रखी है। श्री राम तथा लक्ष्मण ने सरोवर के शीतल जल में स्नान किया और एक घने वृक्ष की छाया में दोनों भाई बैठ गए। वहां देवता तथा मुनियों ने उनकी स्तुति की। सीता हरण के कारण श्री राम के हृदय में विरह वेदना व्याप्त है, ऐसा सोचकर महर्षि नारद के मन में ये विचार उठा कि उन्हीं के शाप को स्वीकार करके श्री राम अनेक प्रकार के दुख उठा रहे हैं। इसी विचार में मग्न नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए प्रभु के सम्मुख उपस्थित हुए।

0: भावना अस्ति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम उड़ीसा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावित होंगी। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ, तस्करी, अवैध वित्तीय लेनदेन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये बैठक आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में कल दिल्ली संवाद को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत की औसत आयु 30 वर्ष से कम है। अगले 3 दशकों तक इसके 30 वर्ष से कम रहने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को जारी की गई थी। नई समय सीमा के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद कल अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्करे तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। उनकी पहचान लश्करे शीर्ष कमांडर मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद वकास और मोहम्मद आसिम के रूप में हुई है। ये सभी आतंकवादी पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के थे। आतंकवादियों का ये समूह कल दोपहर बाद कृष्णा घाटी सेक्टर के नांगी टकटे इलाके में नियंत्रण रेखा पार करने की फिराक में था। तभी उनका पांव बारूदी सुरंग पर पड़ गया और विस्फोट में 4 आतंकवादियों की मौके पर ही मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें स्वचालित हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक शामिल हैं। आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर जिला पुलिस बल, जिला रिजर्व गार्ड और बस्तर फाइटर्स की संयुक्त टीम ने कल किस्ताराम थाना क्षेत्र के पालाचलमा गांव के पहाड़ी और जंगल के इलाकों में पूर्ण नियंत्रण और तलाशी अभियान चलाया। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित करेगा। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाला ये मेला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। मेला इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। भारत और ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के बीच क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवीनतम घटनाक्रमों और परस्पर हित के मुद्दों पर बातचीत हुई। कल नई दिल्ली स्थित ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिव मोहसिन रजाई ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ फोन पर बातचीत की। बैडमिंटन में इस साल WBWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली पीवी सिंधु और पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी आज से आरंभ हो रहे डेनमार्क ओपन में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यपालों की नियुक्ति की। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर तमिलनाडु और ओपी माथुर केरलम के राज्यपाल होंगे। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। चुनाव आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में

0: निश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास हुए विस्फोट में लश्करे तैयबा के 4 आतंकवादी मारे गए। भारत में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 111 करोड़ से अधिक हुई। और बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन 2026 आज से ओडेंस में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम उड़ीसा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक के राज्यपाल होंगे। डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ, तस्करी, अवैध वित्तीय लेनदेन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी भाग लेने वाले गृह मंत्रियों और सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। इसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी से लगे देशों और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में कल दिल्ली संवाद को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया।
2: 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत की औसत आयु 30 वर्ष से कम है। अगले 3 दशकों तक इसके 30 वर्ष से कम रहने की उम्मीद है। हमें विश्वास है वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 trillion की हो जाएगी।
0: निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में 13 जिला निर्वाचन अधिकारी, 70 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 1313 बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ पर्यवेक्षक और 14,900 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी इस कार्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सूचित किया है कि 18 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद कल अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को जारी की गई थी। नई समय सीमा के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन
4: तो शुरू करें इन्वेस्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोलकर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया।

0: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्करे तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। उनकी पहचान लश्करे शीर्ष कमांडर मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद वकास और मोहम्मद आसिम के रूप में हुई है। ये सभी पाकिस्तानी अवैध कब्जे वाले पुंछ जिले के हाजिरा तहसील के मंडला मडारपुर के निवासी थे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत सिंचाई अवसंरचना में सुधार की दिशा में अनुकरणीय प्रदर्शन करने के लिए देश के 100 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये उपलब्धि सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने, कृषि गतिविधियों के लिए जल उपलब्धता में सुधार करने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की दिशा में जिले के प्रयासों को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जो आधुनिक भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रही है।
2: राजगीर की पहाड़ियों के बीच नालंदा की कहानी इतिहास से निकलकर वर्तमान में आती है। साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस परिसर के उद्घाटन में 17 देशों के मिशन प्रमुख शामिल हुए। नालंदा की पहचान सिर्फ उसकी प्राचीनता नहीं बल्कि ज्ञान को दुनिया के साथ बांटने की परंपरा रही है। उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने इसी विरासत को याद किया।
3: नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था, अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं।
2: नालंदा की ये नई यात्रा भी सीमाओं से परे है। आज यहाँ 20 से अधिक देशों के विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। अलग अलग देशों से आए ये विद्यार्थी उस विचार को आगे बढ़ाते हैं जिसे भारत वसुधैव कुटुम्बकम के रूप में देखता है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी बताते हैं कि हम विकास भी और विरासत भी की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं।
4: ये जब हम नालंदा विश्वविद्यालय में अलग अलग तरह की कोर्सेज शुरू करते हैं, अलग अलग तरह के चिंताएं जताते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो नई पीढ़ी है उसके माध्यम से उसी ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का काम हम करते हैं।
2: पुरानी नालंदा की विरासत आज प्रधानमंत्री के प्रयासों से विकास और आधुनिक शिक्षा की नई ताकत बन रही है, जहां अतीत की सीख भारत के भविष्य को दिशा दे रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निदेशश्री की रिपोर्ट।
1: भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या इस वर्ष जून के अंत तक बढ़कर 111 करोड़ 41 लाख से अधिक हो गई है। मार्च 2026 के अंत तक ये लगभग 109 करोड़ 28 लाख थी। इस वृद्धि दर में तिमाही आधार पर 96% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
5: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अपनी भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट में बताया कि कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं में से 4 करोड़ 77 लाख से अधिक वायर्ड इंटरनेट उपभोक्ता और लगभग 106 करोड़ 64 लाख वायरलेस इंटरनेट ग्राहक हैं। इंटरनेट उपभोक्ता आधार में ब्रॉडबैंड और नैरोबैंड दोनों प्रकार के ग्राहक शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार जून 2026 के अंत तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 2.03% की वृद्धि हुई, जबकि नैरोबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 0.89% की कमी आई। रिपोर्ट के अनुसार भारत के टेलीफोन ग्राहकों की संख्या मार्च 2026 के अंत में लगभग 133 करोड़ से बढ़कर जून 2026 के अंत में 134 करोड़ हो गई, जो तिमाही आधार पर 1.31% की वृद्धि है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देवी वैष्णवी की दैवीय शक्ति असीम वीरता का प्रतीक है और वे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देवी पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं और प्रसन्न होने पर मोक्ष का प्रदान करती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित करेगा। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाला ये मेला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से

0: आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। मेला इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने वाले 2022 के राज्य कानून को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश विभू भश्रू और न्यायाधीश के एस हेमालेखा की खंडपीठ ने इस कानून को असंवैधानिक बताया। पीठ ने कहा कि आरक्षण में ये बढ़ोतरी सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी फैसले में तय की गई 50% की कानूनी सीमा का उल्लंघन करती है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओरेंस में शुरू हो रहा है। दो ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 32 में ओलंपिक चैंपियन और विश्व नंबर एक दक्षिण कोरिया की आन से यंग से खेलेंगी। तन्वी शर्मा का मुकाबला जापान की नादुसुकी निदेरा से होगा। अश्मिता चालिहा, देविका सिहाग और उन्नति हुडा अपने प्री क्वार्टर फाइनल मैच आज खेलेंगी। वहीं पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और पूर्व विश्व नंबर एक किदांबी श्रीकांत आज राउंड ऑफ 32 में अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ हिस्सों में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और राजस्थान में भी कल तक ऐसे ही मौसम की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें स्वचालित हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: PCP NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
3: धन्यवाद फरहत। दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर प्रदर्शनों पर रोक लगाने का समाचार सभी अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, जंतर मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं। गृह मंत्रालय की समिति की सिफारिश पर दिल्ली पुलिस ने लगाई रोक। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, कई आंदोलनों के गवाह जंतर मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं। 3 नए स्थान तय, रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान, CBD मैदान। समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियों को परास्त करेगा मंगरोल। नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ 3रा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत। हिंदुस्तान ने उपलब्धि शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने सऊदी अरब में मिसाइल ड्रोन हमलों की वजह से रियाद एयरपोर्ट के बंद होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, सऊदी से उड़ानें बंद, केरलम के 10 लाख लोगों का त्योहारी प्लान अटका। 51% लोग शॉपिंग करने में ले रहे AI की मदद, सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर कर रहे शॉपिंग। नवभारत टाइम्स की खबर है, पोर्टलैंड के पास ओरेगन के जंगलों में गुस्सा निकालने का अनूठा शिविर, जंगल में जुटता है महिलाओं का समूह, भड़ास निकालने के साथ खुद को करती हैं शांत, 7 दिन का पैकेज 4 लाख रुपए, अमर उजाला की सुर्खी है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यपालों की नियुक्ति की। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर तमिलनाडु और OP माथुर केरलम के राज्यपाल होंगे। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। चुनाव आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास हुए विस्फोट में लश्करे तैयबा के 4 आतंकवादी मारे गए। भारत में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 111 करोड़ से अधिक हुई। और बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन 2026 आज से ओडेंस में शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपॉइंट 6 गवर्नर्स, राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर मूव टू तमिलनाडु एंड OP माथुर टू केरलम। इंडिया टू होस्ट फर्स्ट एवर बिम्स्टेक होम मिनिस्टर्स मीटिंग इन न्यू दिल्ली टुडे। इलेक्शन कमीशन लॉन्चेस नेशन वाइड

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी कि 1008 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसधारा। मैं हूं पॉपी आपके साथ और कार्यक्रम की शुरुआत में आइए एक सूचना महत्वपूर्ण

सभी दोस्तों के लिए। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्कल की अध्यक्षता में दिनांक 19 नवंबर 2026 को दोपहर 1 बजे मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल योगायोग भवन P36 CR एवेन्यू कोलकाता 70012 यानी कि 700012 में युगल मीट अर्थात वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 129वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल सिक्किम और अंडमान और निकोबार समूह के डाक सेवाओं से संबंधित शिकायतों और डाकघरों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों के पेंशन संबंधी दावों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यूरों का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री एससी दास सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 के नाम से भेजी जाए और ये डाक या ईमेल IDCPMG अथवा WB@indiapost.gov.in यानी कि gov.in अथवा ADPGCOWB@gmail.com या फिर PG.WB@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 26 अक्टूबर तक या उससे पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि ये बताए गए निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट यानी कि वीडियो सम्मेलन के जरिए डाक अदालत एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हो। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संख्या 0332210250 अथवा 0332210500 पर संपर्क करें। डाक अदालत एवं पेंशन अदालत के आवेदन अथवा ईमेल पर डाक अदालत अथवा पेंशन अदालत शब्द लिखा होना चाहिए।

0: और नवरात्र के शुभ अवसर पर एक विशेष प्रस्तुति।
1: नवरात्रि यानी मां दुर्गा के नौ अवतारों का आह्वान, सृष्टि का आरंभ, सभ्यता का बहता प्रवाह और मानवीय विचारधाराओं की तेज लहरों को प्राप्त होने वाला मां का आशीष इन नौ दिनों में सर्वोपरि होता है।
2: दोस्तों, नवरात्रि के इस पावन पर्व में प्रतिदिन हम आपको दुर्गा दुर्गति नाशिनी के नौ रूपों से परिचय कराएंगे।
1: कार्यक्रम का नाम यशस्विनी दुर्गा, सिंहवासिनी दुर्गा।
2: शोध एवं आलेख कल्पना पांडे दीक्षित, स्वर तथा प्रस्तुति श्यामोयता दास।

चंद्रघंटा। दुश्वारियों पर सहजता से गमन करने वाली दुर्गा का तीसरा रूप चंद्रघंटा है। नवरात्रि की उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना किया जाता है। शक्ति के इस रूप में माथे पर घंटे के आकार

0: का आधा चंद्र है। इनके शरीर में सुनहली आभा दिखती है। इस रूप में शक्ति के 10 हाथ हैं। सिंह पर सवार देवी चंद्रघंटा युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहती है। घंटे की भयावह ध्वनि से ही दैत्य दानव जैसी नकारात्मक ऊर्जा टूटने बिखरने लगती है। चंद्रघंटा की साधना से अलौकिकता का दर्शन सहज ही हो जाता है। शांति की स्थापना ही इस रूप का मर्म है। ये रूप कल्याणकारी होता है। सिद्धों को चंद्रघंटा की उपासना से ब्रह्मांड की आवाजें सुनाई देती है। दिव्य सुगंधियों का अनुभव होने लगता है। चंद्रघंटा की उपासना से अनावश्यक डर खत्म हो जाता है। साहस जागता है। आराधक निडर और साहसी होने के साथ ही विनम्र और सौम्य हो जाता है। यही शक्ति का वो रूप है जिसके वर्तमान में आवश्यकता है। हर व्यक्ति के भीतर की कायरता और भीरुता का उपचार चंद्रघंटा की पूजा में ही संभव है। चंद्रघंटा के सामने शरणागत हो जाना ही परमपद की योग्यता है। देवी चंद्रघंटा को वर्तमान समझ के लिए स्पष्ट करें तो ये पार्वती का विवाहित रूप है, जिसमें शक्ति के 10 हाथ हैं। पति के मस्तक पर विराजित आधे चांद को माथे पर सजाते ही घंटे जैसा प्रतीत हुआ, इसीलिए इस नामकरण को सार्थकता मिली। चंद्रघंटा शक्ति, वीरता और साहस का आशीर्वाद देती है। इनकी उपासना से शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। जीवन यात्रा की बाधाएं अपने आप समाप्त हो जाती है। प्रारब्ध के अपकर्मों से मुक्ति दिलाने वाली देवी चंद्रघंटा ही है। ये क्षमा और शांति की देवी है।
1: चंद्रघंटा, माँ चंद्रघंटा के ऊपर आप एक विशेष कार्यक्रम सुन रहे थे। और अब आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसधारा। हर दिन की तरह आपके साथ मैं हूँ पॉपी, और स्टूडियो की घड़ी कह रही है कि 9:18। कार्यक्रम चलता रहेगा 10 बजे तक। बने रहिए, साथ रहिए, सुनते रहिए रसधारा।

लोगों को बताना चाहेंगे कि कोलकाता इस बार बहुत ज़्यादा सुसज्जित लग रही है और हर जगह रोशनी और डेकोरेशन बिल्कुल अपने अलग पैमाने पर है। वैसे इसके साथ जो हमें ज़्यादा ज़रूरत है वो है सुरक्षा की, तो सुरक्षा के मद्देनज़र कई चीज़ें हुई हैं और नए ढंग से होने को है। आपको बताना चाहेंगे कि महानगर में इस बार दुर्गा पूजा पंडालों की जो संख्या में 400 से अधिक बढ़ोतरी हुई है, मतलब जितने हुए थे उससे और 400 बढ़ चुके हैं। इस वर्ष कोलकाता में कुल 2981 दुर्गा पूजा पंडाल बनाए गए हैं। ये केवल कोलकाता के आंकड़े हैं, कोलकाता के बाहर या कोलकाता के आसपास का नहीं। पूजा के दौरान उमड़ने वाली भारी भीड़ को नियंत्रित करने और यातायात व्यवस्था सुचारू रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए योजना बनाई गई है। और साथ ही बताना चाहेंगे कि मंगलवार तृतीया से ही पुलिसकर्मी सड़कों पर तैनात रहेंगी, जबकि बुधवार चतुर्थी के शाम के साथ व्यवस्था पूरी तरह सक्रिय हो जाएगी। पुलिस अधिकारियों के साथ करीब 80,000 स्वयंसेवक भी भीड़ प्रबंधन में जुड़े रहेंगे। लाल बाजार के अनुसार इस बार सबसे अधिक 665 पूजा पंडाल MSD यानी जादवपुर डिवीजन में है। इसके बाद बेहाला डिवीजन का स्थान जहां 598 पंडाल बनाए गए हैं। पूजा पंडालों की जो संख्या है उसमें बढ़ने के साथ ही छोटे छोटे सभी पंडालों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी जो मुझे लगा कि आपके साथ साझा करें। सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि कोई भी दुर्घटना न घटे और लोगों की खुशियाँ यूँ ही बरकरार रहें।

शुभा मुडगल की मधुर आवाज में आपने सुना ये गीत। और ये इस गीत को हम जोड़ सकते हैं एक ऐश्वर्य भक्ति के साथ। और अब बात करूंगी पूजा में क्या क्या होने को जा रहा है। महानगर में इस बार दुर्गा पूजा पंडालों की संख्या में 400 से बढ़ोतरी हुई है, यानी कि जितनी पूजा होती थी उससे भी 400 की संख्या बढ़ी हुई है। ये तो आपको मालूम ही है, मैंने बताया। लेकिन साथ ही इसके साथ पश्चिम बंगाल सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए सीमा पार में होने वाले आपराधिक गतिविधियों को अंकुश लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। ये बात बताकर हमें खुशी हो रही है कि सरकार ने बांग्लादेश और भूटान की सीमा से जुड़े हुए क्षेत्रों में 11 नए पुलिस आउटपोस्ट स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। और इन चौकियों के संचालन के लिए कुल 200 नए पद की स्वीकृति भी हुई है। तो ये अपने आप में एक बहुत अहम बात है, क्योंकि हमें न सिर्फ अपने घर को ठीक रखना है बल्कि घर के आसपास के इलाकों को भी सही रखना है, ताकि कोई भी आपराधिक गतिविधियां हमें या हमारे पूरे समाज को परेशान न करें। फिलहाल कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म का नाम शराबी।

जी हाँ, हम तो कहेंगे दुर्गा पूजा भी आ गया और अपने सपनों को साकार करने का वक्त भी आ गया, लेकिन मेरा वक्त आ गया डिजिटल क्लॉक। लाल वाली कह रही है कि मुझे आपसे इजाजत लेना है कि लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाऊंगी, यूं ही अकेले नहीं छोड़े जाऊंगी आपको एक खूबसूरत गीत के साथ जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हाँ मिलेंगे एक बार फिर हम और आप लेकर कार्यक्रम सुरभि दोपहर 12 बजे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ तस्करी, अवैध वित्तीय लेनदेन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सभी भाग लेने वाले गृह मंत्रियों और सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में 13 जिला निर्वाचन अधिकारी, 17 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 1313 बूथ स्तर के अधिकारी, पर्यवेक्षक और 14,900 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी इस कार्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सूचित किया कि 18 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या इस वर्ष जून के अंत तक बढ़कर 111 करोड़ 41 लाख से अधिक हो गई है, जबकि मार्च 2026 के अंत तक ये लगभग 109 करोड़ 28 लाख थी। इस वृद्धि दर में तिमाही आधार पर 96% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अपनी भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट में बताया है कि कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं में से 4,77,00,000 से अधिक वायर्ड इंटरनेट उपभोक्ता और लगभग 106,64,00,000 वायरलेस इंटरनेट ग्राहक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि देवी वैष्णवी की दैवीय शक्ति असीम वीरता का प्रतीक है और वे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देवी पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं और प्रसन्न होने पर मोक्ष प्रदान करती हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्करे तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। उनकी पहचान लश्कर के शीर्ष कमांडर मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद वकास और मोहम्मद आसिम के रूप में हुई है। ये सभी पाकिस्तानी अवैध कब्जे वाले पुंछ जिले के हाजिरा तहसील के मंडला मडारपुर के निवासी थे। दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर यातायात पुलिस ने परामर्श जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में आज दिन भर यातायात प्रभावित रहने की संभावना है। कई जगह यातायात मार्ग परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें मिंटो रोड, मंडी हाउस और पटेल चौक गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर, सरदार पटेल मार्ग, क्लॉट प्लेस, आउटर सर्कल शामिल हैं। यातायात पुलिस ने प्रभावित मार्गों पर अनावश्यक यात्रा से बचने, मार्ग बदले जाने के संकेतों और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओडेंस में शुरू हो रहा है। 2 ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 32 में ओलंपिक चैंपियन और विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी दक्षिण कोरिया की आन सान एंग यंग से खेलेंगी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. India will host the first BIMSTEC Home Ministers meeting today in New Delhi, where issues related to terrorism, transnational organized crime, narcotics radicalization, trafficking, illicit financial flows, and cyber threats will be discussed. In a social media post, Home Minister Amit Shah said, "The historic meeting underscores the shared resolve of the BIMSTEC to strengthen cooperation in tackling common security challenges, including terrorism, organized crime." He said, "Through decisive coordination, the members will remain committed to building a safer, stronger and more secure BIMSTEC region." The Election Commission of India, ECI, has stepped up efforts to ensure that every eligible citizen is included in the electoral rolls, with special camps and voter assistance campaigns being organized across several states and union territories. Chief Electoral Officer CEOs and District Election Officers DEOs are taking proactive measures to help voters register their names, correct personal details and resolve discrepancies in the voter lists in line with ECI instructions. Special camps are being organized at polling booths to make voter registration and correction services more accessible. Delhi Traffic Police has issued a traffic advisory for today in view of the law and order situation in New Delhi. The Traffic Police said traffic movement is likely to be affected at various stretches, including Minto Road, roundabout Mandi House, Patel Chowk, Guru Nanak Chowk, Lodhi Road flyover, Sardar Patel Marg and Outer Circle, Connaught Place. The Traffic Police said informed that subject to the prevailing situation,

13 अक्टूबर मंगल का दिन है। सुबह की ताजगी के साथ प्रोग्राम का आगाज इस खूबसूरत शेर के साथ।

अर्ज किया है, तुझे क्या खबर मेरे हम सफ़र, मैं बिखर गया किधर किधर, जो हो सके तो मुझे फिर बना, मेरी सारी खाक समेट कर। दोस्तों, प्यार में फना होना इश्क का मुकद्दर है। पतंगे को शमा का तवाफ़ करते तो आपने ज़रूर देखा होगा, यही राह इश्क में फना होने की मिसाल है। ताहम वक्त हो चला है आज के आईने का, कफ़स में मुझसे रूदाद चमन कहते न डर हमदम, कफ़स में मुझसे रूदाद चमन कहते न डर हमदम, गिरी है जिस पे कल बिजली वो मेरा आशियां क्यों हो। दोस्तों, आज हम एक मुनफरद मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक फितरत से है और इसके असरात से हम मुतासिर भी हुआ करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन यानी आफात के ख़तरे में कमी का आलमी दिन। मौजूद सामिन, आज के आईने में आज बातें होंगी इस मौजू पर। दोस्तों, हर साल 13 अक्टूबर यानी आज ही के दिन दुनिया भर में इसका अहतमाम किया जाता है। इसका मकसद लोगों, हुकूमतों और अदारों को सैलाब, जलजले, तूफान, खुश्क साली और जंगलाती आग जैसी कुदरती आफात से पहले तैयारी, शऊर और मौसर मंसूबा बंदी की तरगीब देना है। चंद बातें इसके पस मंज़र पर। यह दिन अक्वाम मुत्तहदा की जनरल असम्बली के तहत 1989 में शुरू किया गया ताकि आफात के ख़तरात के बारे में अवामी बेदारी पैदा हो और इसके नुकसानात को कम करने के तौर पर आलमी कोशिश को फ़रोग दे। जहाँ तक इस दिन के पैगाम का ताल्लुक है तो कुदरती आफात को मुकम्मल तौर पर रोका नहीं जा सकता, मगर बरवक्त इंतबाह, बेहतर तामीरात, तरबियत और इज्तिमाही तैयारी से इंसानी जानों और इमलाक का नुकसान नुमाया तौर पर कम किया जा सकता है। इतना तो हम कर ही सकते हैं। इस दिन की अहमियत की बातें करें तो बरवक्त इंतबाह और इनखला के मंसूबे मौत और ज़ख्मियों को कम करते हैं। स्कूलों, अस्पतालों और कम्युनिटी मराकज़ में हंगामी तरबियत ज़रूरी है। सैलाब, गर्मी की लहरें और तूफ़ान के पेश नज़र तैयारी मज़ीद अहम हो गई है। अक्वाम मुत्तहदा के मुताबिक दुनिया के कई ममालिक, ख़ास तौर पर कम तरक्की याफ्ता और छोटे जज़ीरा नुमा मुल्क बरवक्त इंतबाही निज़ामों से महरूम हैं। इन्हें दुरुस्त करने पर लाजमी तौर पर गौर करने का मौका मिलता है। अमली इकदामात का जहाँ तक ताल्लुक है, अपने इलाके के कुदरती खतरात जैसे सैलाब या जलजले से वाकफियत हासिल करें, घर में हंगामी किट तैयार रखें, पानी, खुराक और ज़रूरी दस्तावेज़ात समेट कर रखें ताकि हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पर अमल दरामद किया जा सके। मौजूद सामिन, ये था आज का वो आईना जिससे आप रूबरू हुए। ताहम आज का ये सफ़र अभी जारी रहेगा। फ़िलहाल घड़ी कह रही है 10:20:36 और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता की उर्दू पेशकश अंजुमन चैनल संचेता पर मेज़बान सरफराज के साथ। इसके साथ अब बारी है उन खूबसूरत नगमों की जिन्हें आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। क़यामत से क़यामत फिल्म तक का ये नगमा, नगमे को आवाज़ दिया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और मौसीकी है आनंद मिलन की।

ही होगा जो बढ़ के खुद उठा ले हाथ में, मीना उसी का है। जी हाँ, ऐ जज्बाए दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, ऐ जज्बाए दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए दो गाम चलूँ और सामने मंजिल आ जाए। दोस्तों, अगर जज्बा नेक हो तो देर या सवेर मंजिल मिल ही जाती है, शर्त यह है अमल अहम की। तो चलिए आप सुनवाते हैं एक और खूबसूरत सा नगमा अनुराधा पोडवाल और मोहम्मद अज़ीज़ की आवाज़ों में। ये दिलकश नगमा है, समीर के लिखे इस नगमे को मौसिकी दी है आनंद मिलन ने और फिल्म का नाम है आई मिलन की रात।

दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो चला है आकाशवाणी कोलकाता की खसूसी पेशकश रोज़गार के मौके। मुझे सामिन, आज के इस खसूसी पेशकश में न सिर्फ रोज़गार से मुतालिक जानकारियां फराहम की जाएंगी बल्कि स्कॉलरशिप और करियर की रहनुमाई भी इसी प्रोग्राम का एक हिस्सा है जो आपके पेश नज़र है। दोस्तों, रोज़गार या मुलाजमत हर एक की ज़िंदगी से जुड़ा है। रोज़गार के ज़रिए ना सिर्फ आप अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं बल्कि समाज में अपनी एक मुनफरद पहचान भी बनाते हैं। आज हम सबसे पहले बातें करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन के क्लर्कशिप इम्तहान की। पब्लिक सर्विस कमीशन मगरबी बंगाल मस्कुरा वाला इम्तहान का इनकाद करने जा रहा है, जिसके नतीजे की बुनियाद पर लोअर डिवीज़न और असिस्टेंट या लोअर डिवीज़न क्लर्क जैसे ओहदों पर हुकूमत बंगाल के सेक्रेटरीट, डायरेक्टरेट और डिस्ट्रिक्ट दफातर और इलाकाई दफातर बशमूल कोलकाता में बहाली होगी। इम्तहानात में मतवाजा पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री, ऑब्जेक्टिव टाइप और कन्वेंशन टाइप रिटन एग्ज़ाम होंगे। पहले पार्ट में इम्तहान होगा जिसमें कामयाब उम्मीदवारों को पार्ट टू इम्तहान के लिए बुलाया जाएगा और दोनों हिस्सों में कामयाब होने वाले को फिर कंप्यूटर ऑपरेशन की बुनियादी जानकारी और कंप्यूटर पर टाइपिंग का टेस्ट लिया जाएगा। प्राइमरी इम्तहान पार्ट वन के मराकज के तौर पर कोलकाता, बरेपुर, डायमंड हार्बर, बारिकपुर, बारासात, हावड़ा, चिंसूरा, बर्दवान, दुर्गापुर, मदनीपुर, तामलुक, बांकुड़ा, पुरुलिया, झारखंड, सिवड़ी, कृष्णनगर, ब्रह्मपुर, सियालदा, मालदा, बालूरघाट, रायगंज, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूचबिहार और सिलीगुड़ी, कालिम्पोंग और दार्जिलिंग वगैरह शामिल हैं। जहाँ तक तालीमी लियाकत का ताल्लुक है तो वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन माध्यमिक या मसावी इम्तहान पास होना लाजमी है। कंप्यूटर चलाने की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए और कंप्यूटर पर इंग्लिश में 20 अल्फाज फी मिनट, बंगला में 10 अल्फाज फी मिनट स्पीड होना चाहिए। उम्र की हद का जहां तक ताल्लुक है, उम्मीदवारों की उम्र यकम जनवरी 2024 को 18 से 45 के दरमियान होनी चाहिए, यानी उम्मीदवारों की तारीख पैदाइश 2 जनवरी से कबल हो और यकम जनवरी 2006 के बाद नहीं होनी चाहिए। सिर्फ मगरबी बंगाल के ओबीसी उम्मीदवारों के लिए उम्र की बालाई हद में जो है रियायत बरती गई है। दरख्वास्त फीस के तौर पर आमतौर पर दरख्वास्त फीस 110 रुपये है और आप ऑनलाइन इसकी जो है वो जमा कर सकते हैं और 6 अक्टूबर को और इसकी शुरुआत भी हो गई है। इसी के साथ ये भी बताते चलूँ कि टाटा स्टील कंपनी की तरफ से जो है वो बच्चों को स्कॉलरशिप भी फराहम किए जा रहे हैं ताकि अच्छे नंबरों से पास होने वाले तलबा इसमें शामिल हो सकते हैं और अपने मुस्तकबल को रोशन कर सकते हैं। जहां तक और दीगर स्कॉलरशिप के ताल्लुक है तो इस तरह के इंफॉर्मेशन हम हमेशा आपको पेश करते रहेंगे। इसी के साथ आपको ये भी बताएं कि कनारा बैंक में 3,500 ग्रेजुएट बतौर अप्रेंटिस लिए जा रहे हैं। इसके लिए क्या है कि आपको जो है कुछ शरायत हैं और उस शरायत के मुताबिक उम्र की हद जो है 2026 तक उम्मीदवारों की उम्र कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल होनी चाहिए, यानी उम्मीदवारों की तारीख पैदाइश 2 सितंबर 1998 से कबल नहीं और यकम सितंबर 2006 के बाद नहीं के मुताबिक होनी चाहिए। तालीमी लियाकत किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है और इसके लिए ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के मियाद जो है 12 महीने की होगी। उम्मीदवारों को कोर्स निसाब के मुताबिक फराहम किया जाएगा और साथ ही वजीफ़ा के तौर पर भी आपको 16,650 रुपये स्टाइपेंड के तौर पर दिए जाएंगे। दरख्वास्त फीस 500 रुपये है। तो दोस्तों

स्टूडियो की घड़ी में 12 बज चुके हैं और दोस्तों वक्त हो चला है दैनिक कार्यक्रम सुरभि का। तो आइए सुनते हैं हर रोज की तरह दैनिक पत्रिका कार्यक्रम सुरभि।

0: मीडियम वेव 297.6 यानी कि 1008 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे कार्यक्रम सुरभि, मैं हूं पॉपी आपके साथ। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत गीत जिसे गाया है किशोर कुमार ने, साथ में आवाज आशा भोसले की।
1: प्यार की किसी ने जान ली, किसी ने जान दी।

आकाशवाणी के कोलकाता चैनल में आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरभि। मैं हूं पॉपी आपके साथ, और प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे, चर्चा में एक खास दिन है 13 अक्टूबर, तो आज है इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। हर साल 13 अक्टूबर को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने सन 1999 में की थी, ताकि लोगों को आपदाओं से पहले ही तैयार करने के लिए जागरूक किया जा सके। इसका मकसद सिर्फ आपके बाद मदद करना नहीं, बल्कि आपदा से पहले नुकसान को कम करना है। 2026 की थीम है रेजिलियंस स्टार्ट्स एट होम, अर्थात सुरक्षा घर से शुरू होती है। इस साल यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ने थीम रखी है रेजिलियंस स्टार्ट्स एट होम। इसका मतलब बहुत सिंपल है, आपदा सबसे पहले हमारे घर पर ही आती है। बाढ़ का पानी सबसे पहले हमारे बेडरूम में घुसता है, हमारे शयन कक्ष में घुसता है। भूकंप से सबसे पहले हमारी छत हिलती है, और इसलिए सुरक्षा की शुरुआत भी घर से ही होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार दुनिया में हर साल लाखों घर आपदाओं में टूट जाते हैं, और आज भी 80% से ज़्यादा आपदाएं मौसम से जुड़ी होती हैं। हमारे इस आपदा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस विषय के ऊपर बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन की बातें हो रही है, ऐसे में थोड़ी सी तेज़ बारिश में भी आप देखेंगे कि हमारे कुछ एरिया बिल्कुल पानी से भर जाते हैं। आम्फान और यास ने दिखा दिया कि सुंदरबन से आने वाला तूफान सीधा हमारे घर तक आ सकता है, और इसीलिए शायद ये दिन इतना महत्वपूर्ण है। सबको पता होना चाहिए कि आपदा आने पर कहाँ जाना है, किसे फ़ोन करना है, एक सेफ पॉइंट तय करना है, जैसे आपके मोहल्ले का मंदिर हो या स्कूल। घर में एक बैग में हमेशा टॉर्च, पानी का बोतल, सूखा खाना, दवाइयाँ, ज़रूरी कागजात की फोटोकॉपी और मोबाइल पावर बैंक हमेशा साथ में रखकर इस आपदा, जब भी कोई आपदा आए उसके लिए तैयार होना। भारी अलमारी को दीवार से सटाना और गैस सिलेंडर को सही से रखना, और निकास के लिए रास्ता, यानी घर से निकलने के लिए वो क्षेत्र बिल्कुल साफ सुथरा रहे, इसकी भी चेतावनी दी जाती है। मौसम विभाग की वार्निंग को हल्के में कभी भी नहीं लेना चाहिए, और जो भी मौसम विभाग से जो जानकारी हमें मिलती है उसको पूरी तरह से समझकर उसी के हिसाब से चलना चाहिए। आपदा में सबसे पहले पड़ोसी काम आते हैं, बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांग लोगों का खास ध्यान रखना चाहिए जब भी कोई आपदा आए। 13 अक्टूबर हमेशा एक काम कीजिए कि अपने परिवार के साथ 10 मिनट बैठकर ये बात हमेशा साफ कीजिए कि अगर कभी भी कोई अप्रिय घटना जो हमें नहीं होना है, जो हमारे साथ न हो, कोई भी आपदा अगर हो, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में हमेशा अपने परिवार के साथ विचार विमर्श ज़रूर करें। तो ये थी आज की खास पेशकश, जिसे चर्चा है में युक्त

पहल के अंतर्गत आज बात करेंगे प्रधानमंत्री धन जन योजना के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, 2014 को प्रधानमंत्री ने लाल किला से इस योजना का ऐलान किया। मेरा खाता भाग्य विधाता, लक्ष्य यही था, नारा यही था, और देश के हर परिवार का एक बैंक अकाउंट हो, ये हर किसी के जहन में डाला गया। योजना क्या देती है? जीरो बैलेंस, फुल पावर। जन धन सिर्फ अकाउंट नहीं बल्कि एक पूरा सुरक्षा कवच है। बिना किसी मिनिमम बैलेंस के अकाउंट खुलता है, कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता। रुपए डेबिट कार्ड फ्री में मिलता है, एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, दुकान पर पेमेंट कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रुपए कार्ड के साथ 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी आपको साथ ही दिया जाता है। अकाउंट 6 महीने पुराना होने पर 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं किसी भी इमरजेंसी के लिए। सरकार की सारी योजनाओं का पैसा प्रधानमंत्री किसान, गैस सब्सिडी, पेंशन सीधा इसी अकाउंट में आता है, और बीच के जो बिचौलिए हैं उनका अंत हुआ है। इस साल इस योजना ने अपने 12 साल पूरे किए हैं और आंकड़े हैरान करने वाले हैं। कुल खाता तकरीबन 60 करोड़ जनधन खाते खुल चुके हैं और जमा राशि भी एक भारी रकम है। महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा है और इसे माना गया है तकरीबन 56%। गांव-गांव तक पहुंच हुई है इस योजना की, और डिजिटल इंडिया का ये रुपे कार्ड एक बहुत बड़ा औजार है आम इंसान के लिए। जनधन की ताकत है जनधन प्लस आधार प्लस मोबाइल। इस ट्रिनिटी ने सरकारी पैसा सीधा गरीब तक पहुंचाने में बहुत मदद की है। पहले जो पैसा लीक हो जाता था, अब सीधा लाभार्थी के खाते में जाता है। निष्कर्ष ये कह सकते हैं कि जनधन योजना ने बैंक को अमीर लोगों की तिजोरी से निकालकर गरीब की जेब तक पहुंचाया। ये अकाउंट नहीं, ये आत्मसम्मान का खाता है। और आइए कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनते हैं, किशोर कुमार और आलिशा चेनाई की आवाज़ में। फिल्म का नाम मिस्टर इंडिया, और इस गीत के साथ पॉपी को दीजिए अनुमति। फिर मुलाकात होगी आपके साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आए ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से भारत में स्टार्टअप का काफी विस्तार हुआ है।
1: भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते, अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई। करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं। 45% से अधिक स्टार्टअप से कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है, यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत का आर्थिक विकास एक मजबूत नींव पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 7.8% रही। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से अधिक हो गया है और बैंकिंग प्रणाली कई दशकों में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
2: ये केवल नशे का कारोबार नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं के जीवन, हमारे समाज, हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। ये एक देश के प्रयासों से रुक नहीं सकता। हमें होल ऑफ रीजन अप्रोच अपनाना होगा। ड्रग की अवैध कमाई संगठित अपराध को आर्थिक शक्ति देती है और आतंकवादी वित्त पोषण में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रीकर्सर्स रसायनों का डायवर्जन और डार्क वेब के माध्यम से लेनदेन इस चुनौती को और जटिल बनाते हैं।
0: आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति पर गृहमंत्री ने इस दिशा में सामूहिक संकल्प का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी आतंकी नेटवर्क को पनाह, भर्ती, प्रशिक्षण, धन या पड़ोसी देशों के विरुद्ध गतिविधियां चलाने के लिए क्षेत्र में कोई जगह न मिले। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगे। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कूटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को हिरासत में ले लिया है। ये लोग राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस

0: ने कल जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया था। पूर्वी दिल्ली में 3 नए प्रदर्शन स्थल रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी मैदान सूचित किए गए हैं। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओडेंस में शुरू हो रहा है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत भी आज अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 554 अंक बढ़कर 72,479 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 176 अंक की वृद्धि के साथ 22,540 पर पहुंचा। नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये दिन साहस, शांति और दिव्य शक्ति की प्रतीक देवी चंद्रघंटा को समर्पित है। उन्होंने सभी के लिए सुख, समृद्धि और सफलता की कामना की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has said the centre has embodied the principle of power to empower in its governance approach and work culture. Speaking at the Bloomberg New Economy Forum in New Delhi, Mr. Modi said India's progress is rooted in collective growth and shared opportunities. Mr. Modi stated that digital power has opened up greater opportunities for India.
2: भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं। करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस है। 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स है। हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।
1: The Prime Minister said India's economic growth is taking place on a strong foundation amidst global uncertainty. He said the GDP growth stood at 7.8% in the first quarter of this financial year. Mr. Modi highlighted that India had lifted 25 crore people out of poverty over the past decade.
2: पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो, और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: India is hosting the first Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation, BIMSTEC Home Ministers meeting in New Delhi. This historic meeting highlights the collective commitment to combating terrorism, transnational organized crime, narcotics, radicalization, human trafficking, illicit financial flows, and cyber threats. Speaking on the occasion, Union Home Minister Amit Shah said BIMSTEC has emerged as an important platform for regional integration, economic cooperation and collective security. He said India has always been committed to peace and human welfare, guided by the principle of Vasudhaiva Kutumbakam. Mr. Shah reiterated that India respects the sovereignty and territorial integrity of all countries and believes in the peaceful resolution of disputes. Reaffirming India's policy of zero tolerance towards terrorism, the Home Minister called for a collective commitment to ensure that no terrorist network finds space within the region for shelter, recruitment, training, financing, or activities against neighboring countries. Principal Secretary to Prime Minister P.K. Mishra has said data collection and analysis are essential for evidence-based policy making, particularly in the era of artificial intelligence. Addressing the Ministry of Statistics and Programme Implementation Conclave at Bharat Mandapam in New Delhi today, Mr. Mishra said data would form the foundation of India's development journey. He added that India had undergone major transformation over the past decade, with significant

0: Modi says India's economic growth is taking place on a strong foundation amidst global uncertainty, addresses Bloomberg New Economy Forum in New Delhi. Home Minister Amit Shah hails BIMSTEC as an important platform for regional integration, economic cooperation and collective security. UPI merchant discount rate on select person-to-merchant transactions to be implemented after Diwali. IMF raises India's GDP growth forecast to 7% for 2026-27. Canadian Foreign Minister Anita Anand to arrive on a two-day visit to India from today, and Shefali Verma and Shubman Gill named ICC Women's and Men's Player of the Month for September 2026. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत हो रही है। उन्होंने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने बिम्स्टेक को क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट दीपावली के बाद लागू। आईएमएफ ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन के भारत दौरे पर, और शेफाली वर्मा तथा शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि ये दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल शक्ति ने भारत के लिए नए अवसर खोले हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है।
2: भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं। करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं। 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं। हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है, और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका हुआ है।
2: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
1: श्री मोदी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 7.8% रही। उन्होंने कहा कि आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से अधिक हो गया है और बैंकिंग प्रणाली कई दशकों में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
2: पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो, और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से भारत के नवाचारों का काफी विस्तार हुआ है।
2: भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते, अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई। करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से

0: परसेंट से अधिक स्टार्टअप में कम से कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है, यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं।
1: गृहमंत्री ने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के, कृपया इसे फिर से सुन ले, भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया।
2: ये केवल नशे का कारोबार नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं के जीवन, हमारे समाज, हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। ये एक देश के प्रयासों से रुक नहीं सकता। हमें होल ऑफ रीजन अप्रोच अपनाना होगा। ड्रग की अवैध कमाई संगठित अपराध को आर्थिक शक्ति देती है और आतंकवादी वित्त पोषण में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रीकर्सर्स रसायनों का डाइवर्जन और डार्क वेब के माध्यम से लेनदेन इस चुनौती को और जटिल बनाते हैं।
1: गृहमंत्री ने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी की समस्या मानवाधिकारों के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
2: मानव तस्करी भी हमारे साझा सुरक्षा और मानव अधिकारों के समक्ष गंभीर चुनौती है। पीड़ितों की पहचान, बचाव, सहायता, पुनर्वसन और सुरक्षित वापसी में सहयोग हमारे सामूहिक प्रयास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहना चाहिए।
1: श्री शाह ने खुफिया जानकारी, कानून प्रवर्तन, वित्तीय निगरानी और सीमा प्रबंधन एजेंसियों के बीच त्वरित सहयोग और समन्वय की जरूरत पर बल दिया। श्री शाह ने आतंकवादियों को मिलने वाले धन और संगठित अपराध से निपटने में मनोनीत नोडल एजेंसियों के जरिए खुफिया जानकारी के आदान प्रदान और बेहतर समन्वय पर भी बल दिया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रूपये से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए आज यह निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को 6.4% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। आईएमएफ की प्रमुख विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा गया है कि इन अनुमानों में ये सुधार सुदृढ़ घरेलू मांग और मजबूत सेवा गतिविधियों के कारण आर्थिक वृद्धि को मिली अपेक्षा से अधिक गति के कारण किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2027 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई मुक्त व्यापार समझौतों से वैश्विक आर्थिक गतिविधि को बल मिलेगा और आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ होगी। भारत के कोस्टारिका के सैनजोस में स्थित नए रेजिडेंट मिशन ने कार्य करना शुरू कर दिया है। यह मध्य अमेरिका में अपने राजनयिक दायरे को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि यह मिशन भारत और कोस्टारिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मिशन आपसी राजनीतिक जुड़ाव को सुगम बनाएगा, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करेगा। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगी। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कोटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री तथा उद्योग और व्यापार मंत्री कारिल हावलेचक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति का और विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।

0: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए आंकड़े एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
1: नई दिल्ली में भारत मंडपम में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एक सम्मेलन में श्री मिश्रा ने कहा कि आंकड़े भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया ताकि आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया में एक रूपता लाई जा सके और समान परिभाषाओं तथा मानकों को अपनाया जा सके। उन्होंने कहा कि विश्वसनीय आंकड़े इसीलिए भी आवश्यक हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण की प्रगति को मापा जा सके और एक समृद्ध समावेशी नवोन्मेषी और सतत राष्ट्र बनने की दिशा में देश की प्रगति का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में हम बता रहे हैं कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास को कैसे स्थापित किया गया है।
2: 2014 से केंद्र सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर भारत को एक नए राजनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित किया है। गृह मंत्रालय के अनुसार क्षेत्र में उग्रवाद से जुड़ी घटनाओं में 70% से अधिक की भारी कमी आई है। सुरक्षा के माहौल में यह बड़ा सुधार बोडो, कार्बी और उल्फा गुटों सहित सशस्त्र समूहों के साथ हुए एक दर्जन से अधिक ऐतिहासिक शांति समझौतों का परिणाम है, जिसके चलते 10,000 से अधिक उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को कई क्षेत्रों से हटाया गया है। इस सुरक्षित माहौल का लाभ उठाते हुए केंद्र सरकार ने क्षेत्र में रिकॉर्ड निवेश किया है। पीएम दिवाइन जैसी समर्पित योजनाओं के माध्यम से 8 राज्यों में बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है, जिसमें हर मौसम के अनुकूल राजमार्गों, नए रेलवे नेटवर्क और हवाई अड्डे तक शामिल है। 2023 में अपने असम दौरे के दौरान श्री मोदी ने कहा था कि पूर्वोत्तर भारत देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों में से एक बनने की राह पर है।
3: असम में इसमें सरकार और समाज के सामूहिक प्रयासों से जैसे जैसे शांति लौट रही है, वैसे वैसे पुराने नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। लंबे समय तक आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आपसा नॉर्थ ईस्ट के अनेक राज्यों में रहा है, लेकिन बीते 8 सालों के दौरान स्थायी शांति और बेहतर कानून व्यवस्था लागू होने के कारण हमें आपसा को नॉर्थ ईस्ट के कई क्षेत्रों से हटा दिया है। बीते 8 सालों के दौरान नॉर्थ ईस्ट में हिंसा की घटना में करीब 75% की कमी आई।
2: विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार का यह समग्र दृष्टिकोण पूर्वोत्तर भारत को एक सीमांत इलाके से राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक विकास इंजन में तेजी से बदल रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली में 5 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री यादव ने दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को महिला एशिया कप और एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन और महत्वपूर्ण मैचों में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल को वेस्टइंडीज के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए रिकॉर्ड 5वीं बार आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। डेनमार्क बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से ओडेंस में शुरू हो गया है। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु पहले दौर के मुकाबले में जर्मनी की यवोन ली से मुकाबला करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और के श्रीकांत भी आज अपने अपने पहले दौर के मुकाबले खेलेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 598 अंक बढ़कर 72,523 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 189 अंक की बढ़त के साथ 22,552 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वैश्विक

0: अनिश्चितता के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत हो रही है। उन्होंने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने बिम्स्टेक को क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू। आईएमएफ ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। और शेफाली वर्मा तथा शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: আকাশবাণী কলকাতা অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে। এখন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে শুনবেন তিন তালে তবলা লহরা, শিল্পী তাপস পাল।

0: আকাশবাণী কলকাতা, শুরু হল সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গের দ্বিতীয় অধিবেশনের অনুষ্ঠান। স্টুডিওর ঘড়িতে এখন সময় বিকেল 4:59 হয়ে 42 সেকেন্ড। অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে মিডিয়াম ওয়েভে 297.6 মিটার, অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজে। একটু পরেই সংবাদ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका है।
2: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।

0: भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध धन प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में 66वें राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय पाठ्यक्रम के सदस्यों से मुलाकात की। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि तेजी से बदलते सुरक्षा और तकनीकी परिदृश्य से नई और जटिल चुनौतियां सामने आ रही हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमें बेहतर तैयारी, रणनीतिक दूरदर्शिता और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हावलीचेक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वाधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही है, लेकिन उसे अपने कार्यकाल के दौरान आयोग की कार्यप्रणाली दिखाई नहीं देती। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो NDA की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देशहित और जनहित में अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी है, और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ हो उसको कोई राजनीतिक लाभ कभी भी देने का प्रयास नहीं किया।
0: पंजाब के मानसा में आज एक दवा विक्रेता ने कथित तौर पर परविंदर सिंह झोटा की गोली मारकर हत्या कर दी। परविंदर दवा विक्रेता की दुकान पर कथित रूप से मादक पदार्थ बेचने का विरोध करने के लिए गए थे। भाजपा, शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने घटना की निंदा की है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि एक विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों का सेवन देश के युवाओं की क्षमता में बाधा डाल सकता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आयोजित युवा संवाद में श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है, वहां पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है। UPI पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रुपए से अधिक के लेन देन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि UPI और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को 6.4% से बढ़ाकर 4.7% कर दिया है। भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को सितंबर 2026 का ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। वहीं भारतीय कप्तान शुभमन गिल को रिकॉर्ड 5वीं बार ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has said that the centre has embodied the principle of power to empower in his governance approach and work culture. Speaking at the Bloomberg New Economy Forum in New Delhi, Prime Minister Modi said that India's economic growth is taking place on strong foundation amidst global uncertainty. Mr. Modi said country's progress is rooted in collective growth and shared opportunities. He said the government's constant endeavours to ensure that India's capabilities open new doors of opportunity for other countries as well.
3: नॉलेज सिर्फ कुछ लोगों को आगे बढ़ाएगी या करोड़ों लोगों के लिए नए अवसर बढ़ाएगी? क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल है। आप इसे डिजिटल मोड पर भी सुन सकते हैं। फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उर्वशी पूनम के संग। उर्वशी के अंतर्गत एक ही फिल्म से आज आप सब तक कौन सी फिल्म जाएगी ये मैं आपको अभी नहीं बताना चाहती, बल्कि उस फिल्म से ही एक खूबसूरत सा नगमा आप सब तक पहुंचाना चाहती हूं, और उसके बाद आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आखिर वो कौन सी फिल्म है। और अगर ना समझे तो बताने के लिए तो मैं हूं ही। सुनते रहिए, साथ रहिए।

गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं एस डी बर्मन। आवाज किशोर कुमार की और फिल्म का नाम अभिमान। अभिमान भारतीय सिनेमा की एक बेहद कालजयी और भावनात्मक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है जो साल 1973 में प्रदर्शित हुई थी। इसके निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी और मुख्य कलाकार अमिताभ बच्चन और जया भादुरी। अन्य कलाकारों में असरानी, बिंदु, डेविड अब्राहम और दुर्गा खोटे। फिल्म की कहानी संगीत, प्रेम और ईर्ष्या यानी कि अहंकार के इर्द गिर्द घूमती है। आगे क्या होता है बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इसी फिल्म का एक खूबसूरत नगमा आप सब तक पहुंचाऊंगी। सुनते रहिए, साथ रहिए।

5:34 फिलहाल एक सूचना। 139वीं डाक पेंशन अदालत एवं पेंशन अदालत, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल की अध्यक्षता में दिनांक 19/11/2026 को अपराह्न 1 बजे मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल योगायोग भवन P36 CR Avenue कोलकाता 7000012 में गूगल मीट के माध्यम से 139वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की डाक सेवाओं से संबंधित शिकायतों और डाकघरों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों के पेंशन संबंधी दावों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यौरों का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री SC दास, सहायक निदेशक डाक सेवा, ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल P36 CR Avenue कोलकाता 7000012 के नाम से भेजी जाए और यह डाक या ईमेल आईडी CPMG

wb@indiapost.gov.in अथवा adpgcowb@gmail.com या फिर pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 26/10/2026 तक या उसके पूर्व

अदालत में उपस्थित हों। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा से दूरभाष संख्या 033-221-2205-0 अथवा 221-2612 अथवा 221-2500 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत अथवा पेंशन अदालत के आवेदनों ईमेल पर डाक अदालत पेंशन अदालत शब्द लिखा होना चाहिए। डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि से संबंधित विधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई।

फिल्म अभिमान में सुबीर कुमार यानी कि अमिताभ बच्चन एक बेहद सफल और लोकप्रिय पेशेवर गायक है। एक गांव की यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात होती है उमा यानी कि जया भादुड़ी से, जो बहुत ही मीठे और सुरीले स्वर में गाती है। सुबीर उससे बहुत प्रभावित हो जाता है और शादी कर लेता है। शादी के बाद सुबीर उमा को भी अपने साथ पेशेवर गायकी की दुनिया में लाता है और देखते ही देखते उमा की लोकप्रियता सुबीर से भी अधिक बढ़ जाती है और यहाँ से सुबीर के भीतर ईर्ष्या, असुरक्षा और पुरुष अहंकार यानी कि अभिमान जन्म लेता है। आगे क्या होता है बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इसी फिल्म से खूबसूरत नगमा आप सब तक पहुंचाऊंगी। सुनते रहिए, साथ रहिए।

5:48 और जब शुबीर के भीतर अभिमान जन्म लेता है तो इसके कारण दोनों के वैवाहिक जीवन में दरार आ जाती है और रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच जाता है। फिल्म का दूसरा भाग इस बात पर केंद्रित है कि कैसे संगीत ही दोबारा उनके रिश्ते को जोड़ता है। अभिमान केवल एक मनोरंजक फिल्म नहीं है, बल्कि ये रिश्तों में आने वाले अहंकार और गलतफहमियों को भी दर्शाती एक सीख देने वाली फिल्म है, जिसका संगीत हमेशा भारतीय संगीत प्रेमियों के दिलों में जिंदा रहेगा।

और इसी के साथ पूनम को दीजिए थोड़ी देर के लिए आज्ञा, लौट कर फिर आऊंगी, आप सबके लिए लेकर आऊंगी कार्यक्रम हिंदी वार्ता। वक्त होगा 6:10, तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार।

0: Jagannath Karbar Police Station, Egra, District East Midnapur informs that Kumari Priyanka Das, aged about 16 years, medium build, height 5 feet, color skin fair, mother tongue Bengali, is missing since 10th of March 2026. Karthik Bhadra from Kotwali, Krishnagar District, Nodia, informs that Srimati Reena Bhadra, aged about 32 years, normal build, height 5 feet 3 inches, color skin fair, mother tongue Bengali, is missing since 23rd of December 2015. And finally, Abdul Jail Khan from Police Station Nodakhali, District South Rainfor Paganas, informs that Muhammad Safiqul Islam Khan, aged about 59 years, thin built, height 5 feet 7 inches, color skin shallow, is missing since 26th of August 2026. Information regarding all the lost persons may be intimated to the officer in charge, Missing Persons Bureau, CID, West Bengal Police, Bhavani Bhavan, Alipur, Kolkata 700027. And that is the end of the announcement regarding the lost persons. Now, this evening's program highlight at 6:10 p.m. from our station, you will listen to the Hindi program. Listen to classical music at 6:30 p.m. At 7:45 from our station, you will listen to the Hindi Karikram Darpan, film music at 8 o'clock, mixed melodies at 8:15. At 10:30 p.m, listen to the Western music program, and at 11:10, Hindi film songs from our station. Those were the programs to be broadcast on this channel later this evening. You are tuned to the Sanchaita channel of Akashvani, Kolkata. Please stand by.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर निर्भर करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका है।
2: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
1: भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध धन प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हावलीचेक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वावधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। भारत ने दोहराया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन द्वारा किसी भी प्रकार का इंकार इस स्थापित तथ्य को नहीं बदल सकता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने लद्दाख पर चीन की हालिया टिप्पणियों पर आज कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में स्पष्ट है। विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों की पहचान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र में मानक स्थान और भौगोलिक विशेषताओं के नामों के साथ की गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि एक विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों का सेवन देश के युवाओं की क्षमता में बाधा डाल सकता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आयोजित युवा संवाद में श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है, वहां पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है। भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। आज नई दिल्ली में भाजपा

0: के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही है, लेकिन उसे अपने कार्यकाल के दौरान आयोग की कार्यप्रणाली दिखाई नहीं देती। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देशहित और जनहित में अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी है, और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ हो उसको कोई राजनीतिक लाभ कभी भी देने का प्रयास नहीं किया।
0: शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रांची में एक छात्र की दुर्भाग्यपूर्ण मौत की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है। समिति घटना से जुड़ी परिस्थितियों की जांच करेगी और संस्थान में दिशा निर्देशों के पालन का आकलन करेगी। आयुष मंत्रालय ने त्वचा संबंधी बीमारियों के उपचार और प्रबंधन के लिए आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी के साथ योग को शामिल करते हुए मानक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य आयुष की विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में उपचार की प्रक्रिया को अधिक एकरूप बनाना, गुणवत्ता सुनिश्चित करना और वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित चिकित्सा को बढ़ावा देना है। UPI पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रुपए से अधिक के लेन देन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बताया कि UPI और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है। ओडेंस में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन के पहले दिन किदांबी श्रीकांत ने फ्रांस के अर्नोड मर्कले को हरा कर पुरुष सिंगल्स के अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने जापान की नातुस की नेदेरा को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi has said that the centre has embodied the principle of power to empower in his governance approach and work culture. Speaking at the Bloomberg New Economy Forum in New Delhi, Prime Minister Modi said that India's economic growth is taking place on strong foundation amidst global uncertainty. Mr. Modi said country's progress is rooted in collective growth and shared opportunities. He said the government's constant endeavour is to ensure that India's capabilities open new doors of opportunities for other countries as well.
3: नॉलेज सिर्फ कुछ लोगों को आगे बढ़ाएगी या करोड़ों लोगों के लिए नए अवसर बढ़ाएगी? क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है, और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड। और इसलिए आज मैं यहाँ जिस विजन के साथ आया हूँ वो है पावर टू एम्पावर।
2: UPI Merchant Discount Rate MDR on select person-to-merchant transactions will be implemented after Diwali. In a social media post, National Payments Corporation of India said that UPI and Services Steering Committee today decided that keeping in mind the festive season, MDR on select person-to-merchant UPI transactions will be implemented immediately post Diwali. India Today reiterated that Ladakh is an integral and inalienable part of India, and no amount of denial by the Chinese side can change this established fact. In response to media queries regarding recent comments made by the Chinese side on Ladakh, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the press release by Home Affairs Ministry is self-explanatory. The announcement mentions that the 28 places located in the Union Territory of Ladakh have been identified with standard place and feature names on the official map of Survey of India. This has been done in consultation with Ladakh and local stakeholders. Mr. Jaiswal said identifying these places formally on the Survey of India map of Ladakh is aimed at facilitating the accurate recognition and better awareness among the public at large. India is hosting the first Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation BIMSTEC Home Ministers meeting in New Delhi. Speaking on the occasion, Home Minister Amit Shah reaffirmed India's policy of zero tolerance towards terrorism. He called for a

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल है। आप इसे डिजिटल मोड पर भी सुन सकते हैं। फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिंदी वार्ता पूनम के संग। और आज इसके अंतर्गत मैं बात करने जा रही हूं आपदा जोखिम न्यूनीकरण सुरक्षित समाज की तैयारी के विषय में। मानव सभ्यता का इतिहास प्रकृति के साथ उसके सह अस्तित्व और संघर्ष की कहानी रहा है। प्रकृति जहां जीवन का पोषण करती है, वहीं समय समय पर आने वाली आपदाएं मानव जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचाती हैं। प्रकृति के चक्र में बदलाव, जलवायु परिवर्तन और तीव्र अनियोजित शहरीकरण के कारण हाल के दशकों में आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। आपदाएं केवल भौतिक विनाश नहीं लाती, बल्कि सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर देती हैं। इसलिए आधुनिक युग की सबसे बड़ी आवश्यकता केवल आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य चलाना नहीं, बल्कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के माध्यम से आपदाओं से पहले ही एक सुरक्षित और सक्षम समाज तैयार करना है। आपदा और आपदा जोखिम न्यूनीकरण का आखिर अर्थ क्या है? आपदा क्या है? आपदा समाज या समुदाय के कामकाज में होने वाला एक गंभीर व्यवधान है, जिसके कारण व्यापक

बात करूं तो प्राकृतिक बलों और जलवायुगत परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है, और दूसरी है मानव जनित आपदाएं, जैसे कि औद्योगिक दुर्घटनाएं। उदाहरण के लिए भोपाल गैस त्रासदी, रासायनिक नाभिकीय रिसाव, आगजनी, युद्ध, महामारी और प्रभाव मानवीय भूल, लापरवाही, तकनीकी विफलता या लापरवाही के कारण घटित होती है। आखिर आपदा जोखिम न्यूनीकरण की आवश्यकता क्यों है? आपदाओं में प्रतिवर्ष हजारों लोग जान गंवाते हैं और लाखों बेघर हो जाते हैं। जोखिम न्यूनीकरण जीवन रक्षा की पहली सीढ़ी है। आपदाएं किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद को भारी नुकसान पहुंचाती हैं। अवसंरचना के पुनर्निर्माण में अरबों रुपए खर्च होते हैं। पूर्व तैयारी पर खर्च किया गया $1 भविष्य में पुनर्निर्माण के $7 से $10 बचाता है। आपदा न्यूनीकरण के बिना गरीबी उन्मूलन, सुरक्षित शहर और जलवायु कार्रवाई जैसे वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। बढ़ते तापमान और अनियमित मौसम पैटर्न के कारण अतिवृष्टि, सूखा और समुद्री चक्रवातों का खतरा बढ़ गया है, जिससे DRR की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। सुरक्षित और आपदा प्रतिरोधी समाज के निर्माण के लिए 5 प्रमुख घटकों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। जोखिम पहचान और मूल्यांकन, पूर्व चेतावनी प्रणाली और प्रौद्योगिकी, सुरक्षित अवसंरचना और कोड लागू करना, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन और संस्थागत और कानूनी ढांचा। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक स्तर पर कई महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं। सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 तक, यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया 15 वर्षीय ढांचा है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक आपदा जोखिम और जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम करना है। पेरिस जलवायु समझौता जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और आपदा जोखिमों को नियंत्रित करने पर बल देता है। CDRI यानी कि कोलिएशन फॉर डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भारत द्वारा शुरू की गई एक वैश्विक पहल, जिसका उद्देश्य आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है। यद्यपि तकनीकी और संस्थागत प्रगति हुई है इस क्षेत्र में, फिर भी कुछ चुनौतियां मार्ग में बाधा बनती हैं। जागरूकता का अभाव, अनियोजित शहरीकरण, संसाधनों की कमी और जलवायु अनिश्चितता। सुरक्षित समाज के निर्माण हेतु भावी मार्ग क्या क्या हो सकते हैं? प्राथमिक स्तर से ही आपदा प्रबंधन को स्कूली शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाए। स्थानीय लोगों के पारंपरिक ज्ञान जैसे स्वदेशी भवन निर्माण तकनीक को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ा जाए। मैंग्रोव वनों का संरक्षण, वृक्षारोपण और आर्द्र भूमियों का पुनरुद्धार प्राकृतिक सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है। समाज के महिला एवं युवा वर्ग को निर्णय लेने और आपदा प्रबंधन अभियानों के नेतृत्व में शामिल करने की जरूरत है। आपदाएं पूरी तरह से रोकी नहीं जा सकती, लेकिन उनके प्रभाव से उत्पन्न होने वाली तबाही को निश्चित रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण केवल सरकारों या वैज्ञानिक संस्थाओं का दायित्व नहीं है,

0: बल्कि यह प्रत्येक नागरिक का सामूहिक कर्तव्य है। जब एक जागरूक नागरिक आधुनिक तकनीक, सुदृढ़ अवसंरचना और संवेदनशील नीतियां एक साथ मिलती हैं, तब एक आपदा प्रतिरोधी और सुरक्षित समाज का निर्माण होता है। आपदा पूर्व तैयारी में निवेशित प्रत्येक प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, समृद्ध और सतत भविष्य की गारंटी है। सुरक्षा और सजगता ही आपदाओं के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा ढाल है। फिलहाल आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदी वार्ता पूनम के संग, और आज मैं बात कर रही थी आपदा जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षित समाज की तैयारी के विषय में। आपसे फिर मुलाकात होगी 7:30 पर, कार्यक्रम दर्पण लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् वैश्विक अनिश्चिततानां मध्येपि भारतस्य आर्थिक विकासः सुदृढतया प्रतिष्ठितः। अत्रावसरे नवदिल्ल्यां ब्लूमबर्ग आर्थिक मञ्चम् असौ सम्बोधितवान्। दीपावलीपर्वणः अनन्तरं चयनितेषु P2M व्यवहारेषु MDR शुल्कं प्रवर्तिष्यते। लद्दाखः भारतस्य अभिन्नमङ्गम्, चीनस्य प्रत्याख्यानेन न परिवर्तते यथार्थमिति नवदिल्ल्याः दृढ प्रतिपादनम्। अन्ताराष्ट्रिय मुद्राकोषेण 2000 27 वर्षाय भारतस्य आर्थिक विकासानुपातः 7% यावत् वर्धितः। अपि च अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट समित्या सितम्बर मासस्य मासोत्कृष्ट क्रीडक पुरस्काराय शेफाली वर्मा, शुभमन गिल इत्येतौ चितौ। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् केन्द्र सर्वकारेण स्वकीय शासन दृष्टिकोणे कार्य संस्कृतौ च सशक्तिकरणाय सामर्थ्यम् इति सिद्धान्तः अंगीकृतः। नवदिल्ल्यां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम इति आर्थिक मञ्चं सम्बोधयता प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् जागतिक अनिश्चिततानां मध्येपि भारतस्य आर्थिक प्रगतिः अतीव दृढावस्थायाम् अग्रेसरा वर्तते। सः अवोचत् यत् भारतस्य विकासः सामूहिक प्रगतौ सहभाग्यवसरेषु च आधारितः अस्ति। प्रधानमन्त्री अग्रे अवदत् यत् सर्वकारस्य निरन्तर प्रयासः अस्ति यत् भारतस्य सामर्थ्यं विश्वस्य अन्यदेशेभ्यः अपि अवसराणां नूतनद्वाराणि उद्घाटयेत्। सः अवोचत् यत् सामर्थ्यं केवलम् अग्रे गमनस्य क्षमता नास्ति, अपि तु अन्येषां सशक्तीकरणस्य क्षमता वर्तते। श्रीमोदिना उक्तं यत् वर्तमाने युगे अङ्कीयशक्तिः अस्य रूपान्तरणस्य प्रमुखचालकरूपेण उदिता, या अस्य दृष्टिकोणस्य विस्तारे महतीं भूमिकां निर्वहति, यथ च भारते विपुलान् अवसरान् सृजति।
2: भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं। करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस है। 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स है। हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है, और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।
1: प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् यदा कदापि विश्वस्मै स्थिरस्तम्भस्य आवश्यकता भवति तदा भारतं स्वदायित्वम् अनुभूय साहाय्यहस्तं प्रसारयति। श्रीमोदिना सूचितं यत् अद्य भारते 2000+ वैश्विक क्षमता केन्द्राणि सन्ति, यानि सम्पूर्णविश्वस्य वाणिज्यिक संस्थाभ्यः सेवाः प्रयच्छन्ति। प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् भारतं लोकतन्त्रस्य जननी अस्ति, यत्र शतसङ्ख्याधिकाः भाषाः, प्रायः 80,000 पञ्जीकृतानि समाचारपत्राणि प्रकाशनानि च, 1,000+ च उपग्रह दूरदर्शनवाहिन्यः सन्ति। श्रीमोदिना विशेषतया प्रतिपादितं यत् विगते

0: दशके भारतेन 25 कोटि जनाः निर्धन रेखातः बहिः निष्कासिताः।
1: पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो, और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: नवदिल्ल्यां बंगालोपत्यका बहुक्षेत्रीय प्राविधिक आर्थिक सहयोगोपक्रमस्य प्रथम गृहमंत्री सम्मेलनम् भारतस्य आतिथ्ये सम्पद्यते। इदम् ऐतिहासिकं सम्मेलनम् आतंकवादस्य पारदेशीय संगठित अपराधानां मादक द्रव्य तस्कर जालस्य मतांधतायाः मानव दुर्व्यापारस्य अवैध वित्तीय प्रवाहाणाम् अथ च साइबर आह्वानानां सम्मुखीकरणाय सामूहिक संकल्पं दृढयति। अत्रावसरे भाषमाणः गृहमंत्री अमित शाहः अवोचत् यत् बीमस्टेक संगठनं क्षेत्रीय एकीकरणाय आर्थिक सहयोगाय अथ च सामूहिक सुरक्षायै प्रमुखमञ्चत्वेन उदितमस्ति। सः प्रत्यपादयत् यत् भारतं वसुधैव कुटुम्बकम् इति उदात्त दर्शनेन प्रेरितं सत् सदैव विश्वशान्तये मानव कल्याणाय च प्रतिबद्धं वर्तते। आतंकवादं प्रति भारतस्य असहिष्णुतायाः नीतिं प्रतिपादयन् गृहमंत्री सामूहिक प्रतिबद्धतायै आह्वानम् अकरोत्। अस्मिन् सम्पूर्ण क्षेत्रे कस्मै अपि आतंकवादी जालाय आश्रयदानस्य नियुक्ति प्रक्रियायाः प्रशिक्षणस्य वित्तपोषणस्य अथवा प्रतिवेशी देशानां विरुद्धं घातुक कार्याणि संचालयितुं किमपि स्थाननम् न दीयेत।
2: आतंकवादियों, उनके सहायकों, आपराधिक नेटवर्क, वित्तीय चैनल और सीमा पार गतिविधियों पर सत्यापित तथा कार्रवाई योग्य सूचना का समय पर आदान प्रदान हमारी सामूहिक सुरक्षा को मजबूत कर सकता है।
0: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
3: आकाशवाणी वार्ताभिः संयोज्यन्ताम् एक्स्पटले @AIRNewsAlerts इत्यनुसरन्तु अथ सद्यो वृत्तान्ताय च news.AIR.gov.in इति जालपुटम् अवलोकन्ताम्।
0: भारतीय राष्ट्रीय भुक्तान निगमेन सामाजिक संचार पटले संसूचितं यत् UPI अथ सेवा संचालन समित्या उत्सव ऋतुः मनसि निधाय अयं निर्णयः गृहीतः यत् चयनितेषु व्यक्तितः व्यापारी व्यवहारेषु MDR व्यवस्था दीपावली पर्वणः सद्यः अनन्तरमेव प्रवर्त्येत। निगमेन स्पष्टीकृतं यत् अस्य कृते निश्चित दिनाङ्कस्य अधिसूचना पृथक्तया निर्गमिष्यते। प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वे व्यक्तितः व्यक्तिव्यवहाराः राशिसीमा निरपेक्षाः सन्तः सर्वथा निःशुल्काः एव स्थास्यन्ति। MDR शुल्कं केवलं 2,000 रूप्यकेभ्यः अधिकमूल्यस्य व्यक्तितः व्यापारी व्यवहारेषु एव प्रयोज्यं भविष्यति। अनेन प्रायः 96% व्यक्तितः व्यापारी व्यवहाराः सर्वथा अप्रभाविताः स्थास्यन्ति। सहैव व्यक्तितः व्यक्तिव्यापारी संवर्गे UPI QR कोड माध्यमेन प्रतिमासं 100,000 रूप्यकपर्यन्तं धनं प्राप्नुवन्तः लघु व्यापारिणः पथ विक्रेतारश्च सर्वव्यवहारेषु 0 MDR लाभं निरन्तरं प्राप्स्यन्ति। भारतेन अद्य स्पष्टीकृतं यत् लद्दाख केन्द्रशासित प्रदेशः भारतस्य अभिन्नम् अपृथक् करणीयम् अङ्गमस्ति। चीनपक्षस्य न केनापि प्रत्याख्यानेन एतत् यथार्थं परिवर्तयितुं शक्यम्। लद्दाख विषये चीनपक्षेण कृतानां साम्प्रतिक टिप्पणीनां सन्दर्भे संचारमाध्यमानां प्रश्नानां प्रत्युत्तरं प्रददन् विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवोचत् यत् गृहमन्त्रालयेन पूर्वं प्रसारिता विज्ञप्तिः स्वयमेव सर्वं स्पष्टीकरोति। अन्ताराष्ट्रिय मुद्राकोषेण 2000 2027 आर्थिकवर्षाय भारतस्य सकल घरेलूत्पादस्य विकासानुपात पूर्वानुमानं वर्धयित्वा 7% कृतं, यत् जुलाई मासे 14.6% आसीत्। कनाडा देशस्य विदेशमंत्री अनीता आनंदः अद्य

आरभ्य द्विदिवसीयायां भारत यात्रायां आगमिष्यति। स्वयात्रावधौ सा श्वः विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण, कौशल विकास उद्यमशीलता मन्त्रिणा जयंत चौधरी इत्यनेन च सह मेलनं करिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य अंडमान निकोबार द्वीप समूहेषु प्रचंड वृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। महिला एशिया कप अथ च एशियन क्रीडासु उच्चस्तरीय स्पर्धासु सर्वश्रेष्ठ योगदानाय भारतीय क्रीडिका शैफाली वर्मा 28-2000 सितंबर मासस्य कृते आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ इति घोषिता। अपरपक्षे भारतीय दलनायक शुभमन गिल इत्येषः वेस्ट इंडीज दल विरुद्धायां एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्रृंखलायां उत्कृष्ट प्रदर्शनस्य अनन्तरं पंचमं वारं आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ रूपेण नामांकितः। इति वार्ताः।

0: এতক্ষণ কিরোয়ানির আগে শরদ বাজে শোনালেন ত্রৈলী দত্ত। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান এ পর্যন্তই। আকাশবাণী কলকাতা, একটু পরেই সংবাদ।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে মুনীশ শর্মা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर निर्भर करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका हुआ है।
2: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
1: सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के घर से केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का सफर उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। उन्होंने कहा कि अब वो जमीनी स्तर पर लौटना चाहते हैं और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए समय देना चाहते हैं। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्सटेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध धन प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया। भारत ने दोहराया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन द्वारा किसी भी प्रकार का इनकार इस

0: स्थापित तथ्य को बदल नहीं सकता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने लद्दाख पर चीन की हालिया टिप्पणियों पर आज कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में स्पष्ट है। विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों की पहचान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र में मानक स्थान और भौगोलिक विशेषताओं के नामों के साथ की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हाविलचेक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वावधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि एक विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि नशीले पदार्थों का सेवन देश के युवाओं की क्षमता में बाधा डाल सकता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आयोजित युवा संवाद में श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है वहां पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही है, लेकिन उसे अपने कार्यकाल के दौरान आयोग की कार्यप्रणाली दिखाई नहीं देती। ओडेंस में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन के पहले दिन किदाम्बी श्रीकांत ने फ्रांस के अर्नॉड मर्कले को हराकर पुरुष सिंगल्स के अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। हालांकि लक्ष्य सेन को हार का सामना करना पड़ा है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने जापान की नात्सुकी निदेरा को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has said that the centre has embodied the principle of power to empower in its governance approach and work culture. Speaking at the Bloomberg New Economy Forum in New Delhi, Prime Minister Modi said that India's economic growth is taking place on strong foundation amidst global uncertainty. He said the government's constant endeavour is to ensure that India's capabilities open new doors of opportunity for other countries as well.
2: नॉलेज सिर्फ कुछ लोगों को आगे बढ़ाएगी या करोड़ों लोगों के लिए नए अवसर बढ़ाएगी? क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड। और इसलिए आज मैं यहाँ जिस विजन के साथ आया हूँ वो है पावर टू एम्पावर।
1: Meanwhile, speaking at the Bloomberg New Economy Forum in New Delhi today, Finance Minister Nirmala Sitharaman said the government is open to hearing suggestions on the removal of long-term capital gains tax during consultations for the upcoming union budget. She added that the government will continue to follow a disciplined fiscal approach while protecting spending on key areas such as welfare, education and healthcare. UPI Merchant Discount Rate MDR on select person-to-merchant transactions will be implemented after Diwali. In a social media post, National Payments Corporation of India said that UPI and Services Steering Committee today decided that keeping in mind the festive season, MDR on select person-to-merchant UPI transactions will be implemented immediately post Diwali.

0: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 27वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, समुद्र, बंदरगाह और नई आर्थिक शक्ति। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक कोमोडोर केडी जोशी और रणनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर राहुल मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: जनसेवा से देश सेवा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा हम जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 वर्ष पूरे किए हैं सार्वजनिक सेवा के, 13 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और 12 वर्ष से वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, बंदरगाह, समुद्र और नई आर्थिक शक्ति। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत का जो समुद्र तट है वो बहुत लंबा है, 11,099 किलोमीटर के करीब का, और जो इनलैंड वाटरवेज हैं उनकी भी लंबाई 14,500 किलोमीटर के करीब है, और 95% भारत का जो ट्रेड बाय वॉल्यूम और लगभग 70% बाय वैल्यू मैरिटाइम रूट से आवाजाही उसकी होती है। तो इसलिए बहुत ही एक ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इस पर हम एक्सपर्ट ओपिनियन आज लेंगे, बारीकी से चर्चा करेंगे। तो हमारे विशेषज्ञ हैं हमारे साथ जुड़े हुए इस कार्यक्रम में, कॉमोडोर केडी जोशी जो है डिफेंस एनालिस्ट और प्रोफेसर राहुल मिश्रा जो है स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
1: कॉमोडोर जोशी, बंदरगाहों का जो विकास गुजरात में हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, सबसे लंबी कोस्ट लाइन है भारत में वो गुजरात में ही है, 2340 किलोमीटर। सो जिस तरह से वहां की सरकार ने ये रियलाइज किया कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है और प्राइवेट पार्टिसिपेशन के साथ उन्होंने वहां पर कैपेसिटी बिल्डिंग की है, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या ये मॉडल पूरे भारत में, पूरी जो कोस्ट लाइन है वहां पर भी सफल रहा है?
3: आप बिल्कुल सही बोल रही है कि जो प्राइवेट पार्टनरशिप है वही एक फ्यूचरिस्टिक, मैं कहना चाहूंगा कि आगे की सोच का कदम माना जाएगा, क्योंकि जब तक देश के सारे विभिन्न तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस

0: लीजिए, इंडस्ट्रियल हाउसेस कह लीजिए, सरकार कह लीजिए, ये सारे एक साथ अगर आएंगे और पूरे देश का चौतरफा उन्नति की दिशा में अपना अनुदान देंगे, तभी देश में मेरे ख्याल से एक उन्नति ठीक से हो पाएगी। और अगर आप देखें तो सरकार ने जो 2-4 साल पहले मेरे ख्याल से 2020 के आसपास एक फाइनेंशियल शिप बिल्डिंग के लिए एक फाइनेंशियल व्हीकल लॉन्च किया था, तो वो भी सरकार की तरफ से एक कदम है कि ईज ऑफ बिजनेस जिसे बोलते हैं, कि अगर आपको किसी को शिप बिल्डिंग में जाना है, किसी को मैरिटाइम रिलेटेड किसी भी इंडस्ट्री में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो ये एक कॉरपोरेशन है जिससे आप जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी इस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उनको सरकार की तरफ से भी मदद मिलेगी।
1: जी, सो प्रोफेसर मिश्रा, जैसे कॉमोडोर जोशी ने बताया कि पूरी तरह से सरकार ने एक बढ़ावा दिया है निजी क्षेत्र को, पोर्ट्स के जो सेक्टर है उसमें उतरने के लिए। हमारे अब 13 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 से भी अतिरिक्त पोर्ट्स हैं। आप हमें बताएं कि ये जो एक बल दिया गया है बंदरगाहों के विकास पर, समुद्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर, कैसे देखते हैं आप इसको, कितना इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए, हमारे आर्थिक सशक्तिकरण के लिए?
2: भारत में आर्थिक विकास की जो गति है और आर्थिक हमारी जो हर साल की जो सालाना हमारी आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति की जो परसेंटेज है, वो कंसिस्टेंटली एक हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। भारत सरकार ने पिछले 2 दशकों में, खासतौर से पिछले 12 सालों में, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर के, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे कमोडोर जोशी ने कहा, इन तमाम क्षेत्रों में सरकार ने अपनी नीतियों को बहुत स्पष्ट तौर पर सामने रखा है कि सरकार का रोल एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का है। एक ऐसा एनवायरनमेंट तमाम जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनके लिए और आम इंसान के लिए भी, ऐसा एनवायरनमेंट सामने रखना जिसमें कि वो अपनी जो उनकी क्षमताएं उनका विकास कर सकें। तो सरकार का काम एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, जिसमें मुझे लगता है कि सरकार ने पूरी तरह से अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित किया है। इस इनेबलिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि देखिए व्यापार के लिए किसी भी देश की या राज्य की सरकार व्यापार में सीधे तौर पर नहीं उतरती है, अगर वो एक कम्युनिस्ट सरकार ना हो तो। ऐसा जो वातावरण बनता है उसमें प्राइवेट सेक्टर को सीधे तौर पर एक स्टेक होल्डर के तौर पर उतरना पड़ेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि जैसे भारत की आर्थिक प्रगति हो रही है और भारत से मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन उभर रही है और उनका व्यापार बढ़ रहा है दुनिया के तमाम कोनों से, उसको ध्यान में रखते हुए प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप बहुत आवश्यक थी। और भारत के, जैसा आपने कहा कि भारत के बड़े जो बंदरगाह हैं, 13 बंदरगाह हैं, लेकिन 200 छोटे बंदरगाह भी हैं, इनको कैसे पूरी तरह से समेकित रूप से इनका विकास कैसे किया जाए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। मुझे लगता है कि जो भारत का जो मैरिटाइम विजन 2030 है या मैरिटाइम अमृतकाल 2047 है, उसको ध्यान में रखते हुए एक समग्र और समेकित विकास की आवश्यकता रही है। और उसके विकास के लिए ही मुझे लगता है बंदरगाह से जुड़ा हुआ या पोर्ट लेड डेवलपमेंट जिसकी हम बात करते हैं, वो आवश्यक एक जरूरत थी और वो पूरी तरह से निखर के आ रही है सामने। दूसरा एक बड़ा पहलू है कि भारत के जो बंदरगाह हैं, हम देखते हैं कि जो पूर्वी क्षेत्र के बंदरगाह हैं और पश्चिमी क्षेत्र के बंदरगाह हैं, दोनों में पहला तो पूर्व और पश्चिम के बंदरगाहों के बीच में क्षमता को लेकर के और उनका जो व्यापार है, एक जो टनेज का टर्नओवर है, उसको ध्यान में रखते हुए ही पूर्व और पश्चिम में बहुत अंतर है। पश्चिम के पोर्ट बहुत विकसित हैं और मुंबई का जो बंदरगाह है उस पर बहुत ज्यादा लोड था, और इसको ध्यान में रखते हुए गुजरात के जो नए बंदरगाहों का अपग्रेडेशन हो रहा है वो बहुत आवश्यक था। इसमें पूर्व और दक्षिण के बंदरगाहों पर भी काफी व्यापक स्तर पर काम हो रहा है। आगे आने वाले समय में भारत की विकास की गति को सामने रखते हुए इन बंदरगाहों के विकास पर भी काम होगा और तभी भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में निखर कर सामने आ पाएगा।
1: बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि अब प्राइवेट पोर्ट्स भी बहुत मेजर हो गए हैं, अगर हम देखें पीपावाव या हजीरा या मुंद्रा अब बाय वॉल्यूम सबसे बड़ा पोर्ट है भारत में, और जो पोर्ट कैपेसिटी है उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। 2014-15 में 1561 MTPA पर एनम था और अब वो बढ़कर 2817 पर पहुंच गया है, और जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है वो भी 96 घंटों से कम होकर 49 घंटे आ गया है। आप हमें बता सकते हैं कॉमोडोर जोशी की जो ये एवरेज टर्न अराउंड टाइम है ये कितना इंपॉर्टेंट है और ये किस तरह से एफिशिएंसी बढ़ाता है, जो पोर्ट लेड डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं उसको गति देता है?
0: आपने बिल्कुल सही आंकड़े दिए हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये टर्न अराउंड टाइम अभी थोड़ा और भी शायद कम हो रहा होगा, क्योंकि जो सरकार का बेसिक अगर आप एक उद्देश्य मान लें कि टर्न अराउंड टाइम कम करने से पोर्ट में ज्यादा जहाज आएंगे, ज्यादा माल की ढुलाई होगी।

0: ज्यादा माल उन पे लोड किया जाएगा, तो ये पूरा का पूरा जो काम होता है उससे पोर्ट का जो टर्नओवर कहते हैं आप, मुनाफा कहते हैं फाइनली, वो बढ़ेगा। तो अगर पहले क्या होता था, ये सारे जहाज जाते थे दो दो तीन तीन दिन एक पोर्ट में, ये रहते थे, सामान की आवाजाही हो रही है, कंटेनर उतर रहे हैं, कंटेनर चढ़ रहे हैं, तो ये दो तीन दिन का टाइम लगता था। तो अभी अगर जैसे आपने बताया कि ये समय बहुत कम हो गया है, तो उस हिसाब से अगर देखें, दैट मीन अगर एक दिन में ये काम हो रहा है, तो ये पहले 3 दिन में होता था, अभी एक दिन में तीन जहाज निकल गए, पहले एक ही जहाज निकलता 3 दिन में। तो उस हिसाब से टर्नओवर पर शिप अगर देखें तो 3 टाइम्स हो गया है। उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक पूरा जो आर्थिक अपनी जो गति है देश की, उसके लिए बहुत ही ज्यादा एक पैमाना है, टर्नओवर टाइम कितना है और इसको कौन देखता है। ये जो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस है, वर्ल्ड बैंक का ये कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस का इंडेक्स है,
1: जी
0: वो ये सारे मेजर करके ये देखते हैं कि कौन कौन कैसे परफॉर्मेंस चल रही है इन सब चीजों में।
1: जी
0: एक ये पैमाना, उसके अलावा बहुत भी होंगे। अगर आप देखें इनका जो लेटेस्ट इंडेक्स आया हुआ है, उसमें टॉप 30 में हमारे तीन पोर्ट्स आ रहे हैं। जैसे आपने सही बोला, मुंद्रा पोर्ट है गुजरात का, पारादीप पोर्ट है उड़ीसा में, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है मुंबई का। ये
1: जी
0: तीन पोर्ट टॉप 30 में भारत के हैं। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा देश के लिए ये एक गर्व करने की बात है कि ये हमारा देश एक ऐसी दिशा में जा रहा है जो थोड़ा वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छी मानी जाएगी।
1: जी बिल्कुल। इसी संदर्भ में हम आपसे जानना चाहेंगे प्रोफेसर कि जब हम बात करते हैं पोर्ट लेड डेवलपमेंट की या जो लॉजिस्टिक्स है समुद्री यातायात, तो उसमें कौन कौन से ऐसा कार्गो है जो बहुत हमारे लिए क्रिटिकल है, हमारे देश के लिए, जो समुद्री जो रास्ते हैं उनसे वो उसकी आवाजाही होती है और जिसके कारण ये जो समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पर इतना बल दे रही है सरकार।
2: यहाँ कुछ मूलभूत बातें हैं जिनको समझना आवश्यक है हमारे लिए भी और श्रोताओं के लिए भी, कि भारत का और दुनिया का अधिकतम व्यापार 90-95% से ज्यादा व्यापार वो शिपिंग रूट से ही होता है, समुद्री जहाजों से होता है, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है और उससे ज्यादा माल की ढुलाई हो सकती है। इस बात को हम ध्यान रखें। पहली चीज ये है कि जितना तेल और गैस का व्यापार होता है वो सारा व्यापार समुद्री जहाजों के माध्यम से होता है, जितना हैवी कार्गो जाता है वो भी समुद्री जहाजों के माध्यम से जाता है, और इसके साथ ही साथ भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे आने वाले खाद्य पदार्थों का आयात और निर्यात भी समुद्री क्षेत्र से होता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर ये समुद्री यातायात की जो ये जो लाइफ लाइन्स हैं इनको अगर रोक दिया जाए तो दुनिया में व्यापार ही नहीं, दुनिया का चलना मुश्किल हो जाएगा। और ये हमने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस में हमने ये बात देखी कि जब वहां से जहाजों का आवागमन रुका या उस पर एक तरह से नियंत्रण लगा, तो दुनिया के तमाम देश, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों में ऊर्जा को लेकर के बहुत बड़ा संकट हो गया। भारत ने इस संकट को बहुत अच्छे से टैकल किया, ये एक प्रशंसनीय बात है, लेकिन हमने देखा कि कैसे दुनिया के तमाम देशों पर ऊर्जा के क्षेत्र में जो अपने को बहुत ही स्वावलंबी मानते हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, उनके लिए भी यह स्थिति बहुत ही चिंताजनक हो गई थी। तो इसलिए कार्गो के क्षेत्र में हम देखते हैं कि रोजमर्रा की जरूरतों के साथ साथ आयरन और स्टील जैसी चीजें, रबड़ जैसी चीजें जो औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है, लोगों के जीवन में जो खाद्य पदार्थ हैं या जो सामान उनके आम जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी होते हैं उनकी भी, तो किसी भी देश की आर्थिक प्रगति, उसका एक सस्टेनेबल रहना और उसकी जो जनता है, उसके जो नागरिक हैं, उन लोगों का जीवन भी सुगम रूप से चले, इस सभी के लिए मैरिटाइम रूट्स और शिपिंग रूट्स की आवश्यकता है।
1: और कॉमोडोर जोशी, जैसा कि प्रोफेसर मिश्रा ने बताया कि हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए, एक आम नागरिक के लिए जो जरूरत की चीजें हैं उनके लिए भी ये जो समुद्री कारोबार है कितना जरूरी है। अगर हम मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप नेवी में रहे हैं, तो आप बता सकते हैं हमें कि इसी संदर्भ में ये जो आवाजाही भी सुगम रूप से बनी रहे, मैरिटाइम सिक्योरिटी का कितना बड़ा एक एस्पेक्ट है जो हर देश के लिए और खासकर अब जब भारत की बात कर रहे हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
0: आपने एक जो एक पॉइंट निकाला है मैरीटाइम सिक्योरिटी का, वो एक बहुत ही अहम मुद्दा है। आज से नहीं, पिछले 15-16 साल से जब ये दुनिया में, जब इनका फूतीज जो थे या यहाँ पे जो हाईजेक हो रहे थे जहाज और उनसे रैंसम मांगी जाती थी और पूरा का पूरा जहाज बोर्ड कर लिया जाता था और समुद्री जो लुटेरे होते हैं वो आते थे एंड अभी भी आते हैं, और उसके कारण 2008 के करीब से भारतीय नौसेना ने इस एरिया में पेट्रोलिंग शुरू की थी और वो पूरा का पूरा जो जो एंट्री पॉइंट्स हैं ये मिडल ईस्ट के, उसमें बहुत सारे देशों का एक कंसोर्टियम टाइप आप कह सकते हैं, उनके सारे जहाज अपने अपने वहां पे पेट्रोलिंग करते थे, टर्न बाय टर्न आते थे और काफी

0: अच्छी पेट्रोलिंग के कारण ये जो समुद्री लुटेरे आते थे उनका जो इवेंट्स थे, इंसिडेंट थे, सारे बहुत कम हो गए। अभी अगर आप देखें ये क्यों हुआ, ये सारा जब तक आपके पास नौसेना का बल नहीं है, आप अपने सी लेन्स जो समुद्री रास्ते हैं, समुद्री जहाजों के आने जाने के लिए जो रास्ते बने हुए हैं, वो आप सिक्योर नहीं कर सकते, वो खुले पड़े रहेंगे। कोई भी आएगा रास्ते पे आपके जहाजों को वो लेके जाएगा, रैंसम मांगेगा या जो भी करेगा आगे। वो सिक्योर तभी हो सकते हैं जब नौसेना के जहाज उन सी लेन्स को सिक्योर करे। तो एक ये जो एक काम है भारतीय नौसेना का, एक प्रमुख काम है, पीस टाइम वर्क कह सकते हैं आप, कि जब युद्ध ना चल रहा हो तो ये एक मेजर काम रहता है। और
1: जी
0: हमारे जहाज कंटिन्यूअसली वहां पिछले इतने सालों से पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, दो दो तीन तीन जहाज होते हैं वहां पे। तो उसके कारण मेरे ख्याल से आप ये कह सकते हैं कि अगर देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही है तो उसके लिए एक सशक्त नौसेना का होना बहुत जरूरी है।
1: जी
0: और मेरे ख्याल से पिछले करीब करीब कुछ सालों में सरकार ने ये काम किया हुआ है। अगर आप जहाजों का थ्रूपुट देखें, जो नेवी के जहाज बन रहे हैं, वो काफी सारे जहाज लॉन्च हुए हैं, काफी सारे जहाज कमीशन हुए हैं और बहुत मॉडर्न जहाज हैं। आज की तारीख में भारतीय नौसेना जो है वो एक सशक्त और आप कह सकते हैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बोलते हैं
1: जी
0: इंडियन ओशन रीजन, तो जिसमें अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल भी आ जाता है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भारतीय नौसेना को माना जाता है।
1: बिल्कुल, बहुत ही जरूरी है दोनों का पैरेलल विकास, जिस पर पूरा बल दिया गया है पिछले कुछ वर्षों में। प्रोफेसर मिश्रा, अगर आपके पास आए तो सागरमाला प्रोग्राम जो सरकार का 2015 में शुरू हुआ पोर्टलेट डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें मैकेनाइजेशन, जो आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो डिजिटल सिस्टम्स को पोर्ट ऑपरेशंस में इनकॉर्पोरेट करना, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, इस सब को आप कैसे देखते हैं? ये जो एक कहें कि फोकस्ड एफर्ट है सरकार का।
2: देखिए, सागरमाला जो परियोजना 2015 में जिसको लॉन्च किया गया, उसके पीछे जो महत्वपूर्ण उसके उद्देश्य थे वो ये थे कि भारत के तमाम बंदरगाह पुरानी तकनीक पर चल रहे थे, जिसमें बहुत ज्यादा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट था और उसमें बहुत ज्यादा जो पुराने किस्म के तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा था। सागरमाला परियोजना के तहत ये बात की गई कि बंदरगाहों का न सिर्फ उनका आधुनिकीकरण करना है, बल्कि बंदरगाहों के बीच में आपस में कनेक्टिविटी हो। और एक बार जब किसी जहाज से, किसी कार्गो या कंटेनर शिप से जब माल वो बंदरगाह पर डॉक होता है, तो वहां से रोड कनेक्टिविटी कैसी है, और तमाम बंदरगाहों के साथ एक ये भी समस्या भारत में पहले रही है कि उनके लिए जो इनेबलिंग इकोसिस्टम है वो नहीं था, तो उसके विकास के लिए भी सागरमाला परियोजना में ध्यान दिया गया। साथ ही साथ इस इकोसिस्टम में ये बात की गई कि किसी भी बंदरगाह में सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि वहां पर एक पोर्ट फैसिलिटी है, डॉकिंग फैसिलिटी है, वहां पर सामान उतर गया, उस सामान का स्टोरेज कैसे हो और वो अत्याधुनिक तकनीक पर कैसे बेस्ड हो। तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जो परिवहन है, चाहे वो जल परिवहन हो, चाहे वो रोड परिवहन हो, या रेलवे के रास्ते जाए, उसको कैसे विकसित किया जाए, और खासतौर से जो इनलैंड वाटरवेज है उनके विकास की कोशिशें की गई। तो सागरमाला परियोजना मुझे लगता है कि एक बहुत क्रांतिकारी कदम रहा है पोर्ट लेड डेवलपमेंट के क्षेत्र में भारत में, और इसने भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी बहुत तेजी से दुनिया की तमाम जो अग्रणी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनसे कॉम्पीट करने और उनके बराबर चलने की क्षमता प्रोवाइड की है। 845 परियोजनाओं को नामांकित किया गया था 2015 में और उनमें से 315 परियोजनाएं अभी पूरी हो चुकी हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि सागरमाला इनिशिएटिव, जैसा कि नाम भी खुद ये बताता है कि ये तमाम जो भारत के बंदरगाह हैं उनको एक माला की कड़ियों की तरह जोड़ना है, जिससे कि उन तमाम बंदरगाहों में आपस में भी कनेक्टिविटी रहे, एक कोऑर्डिनेशन रहे, अत्याधुनिक तकनीक से वो जुड़े रहें, कम्युनिकेशन और उन कोऑर्डिनेशन की उनमें लगातार एक सुगम यातायात रहे, और साथ ही साथ इस पूरी बंदरगाहों के विकास और उनके अत्याधुनिकीकरण के साथ साथ भारत के आम नागरिक, छोटे जो व्यापारी हैं, जो लोग पर्यावरण संबंधी मुद्दों से जुड़े हुए हैं या जो लोग टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए भी ऐसी व्यवस्थाएं और ऐसी परियोजनाएं चलाना कि वो भी जब बंदरगाहों का विकास हो और ज्यादा माल ढुलाई हो, व्यापार बढ़े, तो वो लोग भी इस विकास का फायदा उठा सके और उसमें अपना योगदान दे सके।
1: बिल्कुल, और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम हुए हैं, समय जो लगता था उस सामान को पहुंचाने में वो भी कम हुआ। आपने इनलैंड वाटरवेज की बात करी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स है हमारे सामने कि लगभग 700% बढ़े हैं कार्गो मूवमेंट मूवमेंट इनलैंड वाटरवेज में। सो इस संदर्भ में जो हमारा कहें कि जो वाराणसी मल्टी मोड टर्मिनल है, जो पहला मल्टी मोड टर्मिनल है गंगा नदी पर जो गवर्नमेंट

0: की जल मार्ग विकास परियोजना है, ये आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है, जैसा आप कह रहे थे कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने के लिए और जो समय है उसको भी कम करने के लिए?
1: देखिए, इनलैंड वाटरवेज भारत में उनकी परिकल्पना बहुत पहले से रही है, लेकिन इनलैंड वाटरवेज का उतनी अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं हो सका। और क्योंकि भारत में गंगा नदी, मुख्य रूप से गंगा नदी के रास्ते बनारस से लेकर वाराणसी से लेकर कलकत्ता तक का एक वाटरवे बनता है, जिसमें तमाम जो छोटे और बड़े शहर हैं वो उसके साथ जुड़ सकते हैं। आज जो इनलैंड वाटरवेज 1 की बात हो रही है, जिसमें वाराणसी को एक बहुत प्रमुख स्थान दिया गया, क्योंकि सीधे इस इनलैंड वाटरवे के माध्यम से भारत के उत्तरी जो राज्य हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, तमाम ये जो प्रदेश आते हैं जो किसी भी तरह से किसी भी बंदरगाह से या समुद्र तट से जुड़े नहीं हैं, उनके लिए कैसे ये व्यवस्था की जाए कि वो भी पोर्टलेट डेवलपमेंट में हिस्सेदार बने और उनके जो निर्यात के सामान है या उनके लिए जो सामान बाहर से आ रहा है उसको कैसे जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। क्योंकि देखिए, शिपिंग में और जो समुद्री व्यापार है, ये वैसे ही है, एक बहुत अच्छा उदाहरण तो नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति को जब हार्ट अटैक आता है तो उसके जो 3 घंटे और 4 घंटे होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी तरह जब कोई माल, खास तौर पे खाद्य पदार्थ, जब वो किसी बंदरगाह पर डॉक होता है, जब उसको उतारा जाता है, वहां से कितनी जल्दी वो बाजार पहुंच सके, मार्केट में पहुंच सके, लोगों के पास पहुंच सके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खाद्य पदार्थों के मामले में ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर वो 48 घंटे और 72 घंटे के बाद पहुंचेगा तो आधे से ज्यादा सामान खराब हो जाएगा। भारत के उत्तरी राज्यों के लिए ये एक विशेष चिंता की बात है, क्योंकि जैसे अगर हम आम, क्योंकि उत्तर भारत के तमाम प्रदेशों में आम निर्यात करने की कोशिश होती है, उनके लिए ये हमेशा से एक समस्या रही है कि उनके जो एक्सपोर्ट आइटम्स है वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट तक पहुंचने से पहले ही सड़ जाते थे। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इनलैंड वाटरवेज पर खास ध्यान दिया जाए और उनको विकसित किया जाए। और इसीलिए मुझे लगता है कि वाराणसी मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट या नमो घाट और तमाम जो परियोजनाएं वाराणसी में चल रही है उनका एक बहुत दूरगामी परिणाम होगा इनलैंड वाटरवेज को आगे बढ़ाने में और उनके योगदान को बढ़ाने में पोर्टलेट डेवलपमेंट की जो संकल्पना है भारत की आर्थिक विकास।
0: आपने बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी देकर हमें ये बात समझाई है। कॉमोडोर जोशी, आपके पास हम आते हैं। विजिंगजाम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट जो केरला में विकसित हुआ है, 2015 में ये इनॉग्रेट हुआ, कैसे देखते हैं आप इसको, ये ग्लोबल सी रूट से हमें कनेक्ट करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये?
2: जी, अगर आप थोड़ा नक्शे पे ध्यान दें दुनिया के, तो आज की डेट में एक प्रोसेस बोला जाए, एक तो ट्रांसशिपमेंट का एक प्रोसेस है और वो सिंगापुर आज की डेट में सबसे बड़ा एक पोर्ट है जिसमें ये सबसे ज्यादा ट्रांसशिपमेंट होती है। ट्रांसशिपमेंट का मतलब ये है कि जो बड़े बड़े जहाज बहुत सारा सामान लेके आते हैं उनको पूरा का पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करना मतलब कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, बहुत ज्यादा उसकी कीमत लगती है। तो क्या किया जाता है कि समझिए आप सिंगापुर का एग्जांपल ले रहे हैं, जो ईस्टर्न साइड से सामान आ रहा है वो सिंगापुर में छोटे जहाजों में जाएगा, कंपैरेटिवली छोटे जहाजों में, और फिर वो बाकी वेस्टर्न साइड की तरफ मतलब हिंदुस्तान की तरफ मलाका स्ट्रेट से होता हुआ इस तरफ आएगा या फिर मिडल ईस्ट या जो भी अफ्रीका में जाना है वो जाएगा। तो एक प्रोडक्शन सेंटर है, एक ट्रांसशिपमेंट सेंटर है। अगर हमारी ज्योग्राफी देखा जाए, पेनिनसुलर कंट्री बोलते हैं अपने को, एंड ये जो विजिंगजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट बन रहा है ट्रिवेंड्रम में
0: जी,
2: वो एक डीप वाटर पोर्ट है। एक 20 से 24 मीटर का ड्राफ्ट मिलता है वहां पे, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है और इंटरनेशनल शिपिंग लेंस जो है ये उसके बहुत करीब है। इनफैक्ट जो सिंगापुर से लेके जो पर्शियन गल्फ की तरफ लेन जा रही है, मलाका स्ट्रेट से पर्शियन गल्फ की तरफ, वो तो इसके बिल्कुल साथ से होती हुई जाती है, और जो सुएज कैनाल की तरफ जो लेन जा रही है वो इससे करीब 20 से 30 नॉटिकल माइल, अगर किसी को विजिंगजाम पोर्ट में आना होगा तो 20 से 30 माइल का डायवर्जन लेना पड़ेगा। तो ये लोकेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें क्या होगा कि जो समझिए आप मिडल ईस्ट से, यूरोप से, मेडिटेरियन से सुएज कैनाल के थ्रू होते हुए जहाज इधर आ रहे हैं वो सारे के सारे ट्रांसशिपमेंट अपने यहाँ हो सकती है, और फिर यहाँ से जहाज या तो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल होंगे या फिर ईस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड जाएंगे। सो मेरे ख्याल से ये जो एक दूरगामी जो परिणाम है इसका, वो काफी आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 24-25 में करीब करीब 1.2 मिलियन TEUs जो यूनिट होती है, 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट बोली जाती है, वो इसका थ्रूपुट हो चुका है। और जब फेज 2 और फेज 3 खत्म होएगा 2028 तक
0: जी,
2: तो उस टाइम पे जो इनका जो एम है

0: टारगेट है, एक विजन है कि 4.5 मिलियन टीयू से ऊपर का व्यापार होगा यहाँ पे, और फाइनल फेज 2040 में 7.2 मिलियन टीयूज का होने का उद्देश्य है इस बार।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं जन सेवा से देश सेवा श्रृंखला, और आज हमारी चर्चा का विषय है बंदर का समुद्र और नई आर्थिक शक्ति। और हमारे साथ दो विशेषज्ञ आज इस कार्यक्रम में शामिल हैं, कॉमोडोर केडी जोशी, डिफेंस एनालिस्ट, और प्रोफेसर राहुल मिश्रा, स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट। प्रोफेसर मिश्रा, आपके पास आते हैं, एक जो बहुत ही रोचक और कहें कि बहुत ही उपयोगी ग्रास रूट्स लेवल पे जो प्रोग्राम है समुद्र तट के विकास को लेकर गुजरात ने, जहां पे सबसे ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन है, सागर खेड़ू सर्वांगी विकास योजना जो 2007 में शुरू की गई, इसको आप कैसे देखते हैं, जिसमें लगभग 13,000 जो कोस्टल विलेजेस हैं वहां पर बिजली पहुंचाने की और उसको निर्बाध रूप से पहुंचाने की व्यवस्था पर बल दिया गया है।
2: देखिए, ये जो परियोजना है सागर काठा के तमाम जो जिले हैं जिसमें कच्छ, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़ और तमाम भावनगर, अहमदाबाद, ये सभी उसमें आते हैं। इन तमाम शहरों के साथ एक समस्या ये थी कि जो बुनियादी ढांचा है, चाहे वो बिजली की आपूर्ति हो या पीने के पानी की सतत आपूर्ति हो, इन तमाम मुद्दों पर जो सामुद्रिक क्षेत्र का विकास होता है, खारे पानी के प्रवेश को रोकना, एक गुजरात के तमाम बंदरगाहों के साथ एक समस्या ये है कि क्योंकि वहां पर हाई टाइड के साथ बहुत ज्यादा सिल्टिंग हो जाती है और जो गाद आ जाती है उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। बहुत पहले के समय में, आज से 1000 साल पहले भी, जब लोथल एक मानव निर्मित जब बंदरगाह बनाया गया था सिंधु घाटी सभ्यता के समय, आज से 3000 साल पहले, बल्कि उससे ज्यादा, तब भी यही समस्या आई थी कि बहुत सारी गाद जो है वो बंदरगाह और उसके रास्ते उस क्षेत्र के अंदर आ गई। तो खारे पानी के साथ साथ इन तमाम समस्याओं से निपटने के लिए इस योजना का की संकल्पना की गई, और मूलभूत तौर से इसका उद्देश्य ये है कि जो लोग, जो जनता इन बंदरगाहों के आसपास रहती है, जो इन बंदरगाहों से होने वाले व्यापार और इन बंदरगाहों के सुचारू रूप से चलाने के लिए जिनकी जरूरत है, उनकी जो डेली लाइफ की जो आवश्यकताएं हैं उनको कैसे पूरा किया जा सके, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लिए इंटरनल पीपल सेंट्रिक कनेक्टिविटी को कैसे जोड़ा जाए, उनके लिए पीने का पानी कैसे मुहैया कराया जाए और तमाम इन समस्याओं से कैसे निपटा जाए, इसके लिए इस परियोजना को चलाया गया था। तो इसका फोकस बहुत ही लोकलाइज था, लेकिन इसका इम्पैक्ट मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि ये किसी भी बंदरगाह के लंबे समय तक और सुदृढ़ रूप से चलने के लिए बहुत आवश्यक,
1: कह सकते एक तरह से मॉडल है। और सागरमाला के तहत 11 जो फिशिंग हार्बर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके तहत 30,000 जो मछुआरे हैं उनको फायदा हुआ है, आपको लगता है ये भी बहुत होलसम होलिस्टिक अप्रोच है?
2: जी बिल्कुल, दुनिया के तमाम देश जिन्होंने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण किया है और उनके विकास पर ध्यान दिया है, उन्होंने ये भी देखा है कि जो छोटे मछुआरे हैं, जो लोकल अर्थव्यवस्था है, वो बंदरगाहों पर जो निर्भर है या तटीय क्षेत्रों पर निर्भर है, उनको कैसे इस बंदरगाह के विकास में या पोर्टलेट डेवलपमेंट में से जोड़ा जा सके, क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है, और ऐसे भी उदाहरण है दुनिया के तमाम बंदरगाहों के जहां बहुत तेजी से विकास हुआ, बहुत तेजी से उनको डेवलप किया गया और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बंदरगाह बन गए, लेकिन जो जनता उससे जुड़ी हुई थी वो कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज हो गई। इन तमाम सागरमाला के तहत इन तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके पीछे एक बड़ा उद्देश्य ये है कि जब हम आर्थिक प्रगति और आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, ज्यादा बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन और बहुत ज्यादा आयात और निर्यात की बात कर रहे हैं, तो हम आम जनता के कंसर्न्स और उनकी जरूरतों को कहीं पीछे ना छोड़ दें। तो ये एक बहुत ही होलिस्टिक, बहुत ही समेकित परियोजना है सागरमाला, और इसके तहत मुझे लगता है कि जनता विकास के साथ साथ आर्थिक प्रगति दोनों को जोड़ने की कोशिश की गई।
1: बिल्कुल, कॉमोडोर जोशी, अभी प्रोफेसर मिश्रा ने एक मेंशन किया लोथल जो गुजरात में, वहां पर जो नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्योंकि ये एंशंट जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वहां डॉकयार्ड था 4,500 वर्ष पुराना, तो ये जो हमारी एक हिस्ट्री है मैरिटाइम हिस्ट्री, उसके लिए आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा उसको शोकेस करने का और पूरे देश के गौरव के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है? कहा जा रहा है कि ये विश्व का सबसे बड़ा मैरिटाइम म्यूजियम होगा जब ये बन जाएगा तो।
0: जी सोलो जी, बिल्कुल सही आप दिशा में आपने जो बोला है, ये जो 4,500 साल पहले जब ये बनाया गया था, इसमें एक ड्राई डॉक भी होता था, तो मतलब आप सोचिए कि कितना एडवांस वो सिटी होगा जिसमें एक जहाजों को अंदर लाके ड्राई डॉकिंग की भी फैसिलिटी बनाई गई हुई थी। तो उसी हिसाब से मैरीटाइम कल्चर जो बोलेंगे, या फिर इंडियन सिविलाइजेशन का या इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मैरीटाइम कल्चर था, वो कहीं ना कहीं आज की डेट में हम सारे हमारे देश के लोगों को थोड़ा सा, हमें जानकारी नहीं है, हमें उस चीज का ज्ञान नहीं है, और

मेरे ख्याल से जब ये नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जब बन के पूरा हो जाएगा, ये दो फेजेस में बन रहा है और पहला फेज में फेज ए और फेज बी भी है, जब ये पूरा हो जाएगा मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही आकर्षक जगह होने वाली है, जिसमें अपने आप में ये एक डेस्टिनेशन हो जाएगा कि आप लोग वहां पे जाएंगे और एक मैरिटाइम जो हेरिटेज है उसको कैसे हिंदुस्तान

0: परियोजना जो है वो स्थापित हुई है, और जब ये कंप्लीट हो जाएगी मेरे ख्याल से कि ये बहुत ही अच्छा एक आप कह सकते हैं एक दर्शनीय स्थल हो जाएगा, लोगों के लिए वहां पे भी जाना बहुत आवश्यक हो जाएगा।
1: प्रोफेसर मिश्रा, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नेदरलैंड्स और वियतनाम के साथ मिलकर उनसे भी लिया जा रहा है टेक्निकल एडवाइस, तो कैसे देखते हैं आप इस प्रोजेक्ट को?
2: मुझे लगता है इसमें दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है, विकसित भारत 2047 में भारत को एक आर्थिक महाशक्ति ही नहीं बनना है, भारत को अपने जो इतिहास को प्रेजेंट करने में जो गलतियां की गई हैं उनको भी सुधारना है। तमाम तथाकथित इतिहासकार जो भारत के हैं और भारतीय इतिहास पर लिख चुके हैं वो ये हमेशा से कहते आए हैं कि भारत कभी एक मैरिटाइम नेशन नहीं रहा है, ये तो एक कॉन्टिनेंटल देश रहा है जिसने कभी समुद्री यातायात या समुद्री सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखा। इस नैरेटिव को एक सिरे से नकारने के लिए और इस डिबेट को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए मुझे लगता है इस मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की स्थापना जरूरी थी। और क्योंकि ये इस बात को सामने रखता है कि आज से 5000 साल पहले भी भारत एक समुद्री महाशक्ति था, भारत के पास उस समय की सबसे अत्याधुनिक तकनीक थी जब हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक बड़ा स्थान रखते थे, हमने मानव निर्मित एक बंदरगाह बनाया जिसको आज फिर रिवाइव करने और उसको एक हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में रखने की बात हो रही है। और इससे यह भी सिद्ध होता है कि लोथल जो कि अहमदाबाद शहर का हिस्सा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कितना बड़ा उसका योगदान रहा है। और इसमें आपने जो बात कही नेदरलैंड्स और वियतनाम के साथ सहयोग किए, ये दोनों देश भी वियतनाम और नेदरलैंड्स दोनों ही देश ऐतिहासिक रूप से बहुत बड़े पोर्ट्स को लेकर के और अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार को लेकर के वो हमेशा से ही बड़े एक्टर्स और बड़े प्लेयर्स रहे, तो उनके साथ सहयोग मुझे लगता है इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम कलेक्टिवली अपनी जो हमारी जो साझा विरासत है उसको भी हम सामने लेकर के आए। और इस लिहाज से एक यूरोपीय देश और वियतनाम जो कि जिसकी अपनी 5000 साल की एक ग्लोरियस उसका इतिहास है उसको भी सामने रखना बहुत जरूरी।
1: सो कॉमोडोर जोशी, जैसा आप दोनों ने ही बताया कि कितना हमारा ग्लोरियस इतिहास है, मैरिटाइम इतिहास, उसको दर्शाया जाएगा और साथ ही साथ आपको लगता है कि बहुत होलिस्टिक अप्रोच है सरकार का कि विरासत का गौरव उसको बनाए रखना, साथ ही साथ जो मैरिटाइम इंडिया विजन 2030 जिसकी बात अभी प्रोफेसर मिश्रा भी कर रहे थे, जिसमें 150 से ज्यादा पहले हैं 3 से 3.5 लाख करोड़ रुपए की, और जिसमें पिछले वर्ष का लगभग 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज शिप बिल्डिंग का भी शामिल है, और न सिर्फ ये मैरिटाइम अमृतकाल विजन भी 2047 उसको भी सरकार ने ऑलरेडी उसके बारे में सोचा है एक दूरगामी सोच के साथ। कितना आपको ये अप्रोच कहें कि ऑलराउंड अप्रोच लगता है?
0: बिल्कुल, एक चौतरफा सोच मेरे को दिखती है पूरे इसमें, क्योंकि आप देखिए बंदरगाहों को डेवलप करना, कोस्टल कम्युनिटी को साथ में लेके चलना, जो प्रोफेसर साहब अभी बोल रहे थे कि कई बार मार्जिनलाइज हो जाती है जो लोकल लोग रहने वाले हैं
1: जी,
0: वो बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है लेकिन लोकल लोगों को उनकी सुविधाओं का उनकी जरूरतों का थोड़ा सा ध्यान नहीं रख पाते हैं बहुत बार। लेकिन अगर आप देखें ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं चाहे MIV के तहत हो, चाहे MAKV के तहत हो, या चाहे फिर सागरमाला के तहत हो, पांचवा जो पिलर है सागरमाला का वो है कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट का पिलर है। मतलब पूरा का पूरा एक फंडामेंटल पिलर यही बोल रहा है कि जो हमारी जो कोस्टल कम्युनिटीज है, नॉट सिर्फ पोर्ट में नहीं, सिर्फ बंदरगाहों में नहीं, पूरी कोस्ट में, उन सबको साथ में लेके हमको डेवलप करना है
1: जी।
0: और उनका ध्यान जरूर रखना है। और उसके लिए अगर आप देखिए तो अगर डेवलपमेंट कोस्ट में हो रही है, पोर्ट्स पे हो रही है, तो जो सरकार ने इतना जो बजट आउटले किया हुआ है 3.5 लाख करोड़ रुपए का MIV के लिए और करीब करीब 80 लाख करोड़ रुपए का इसके लिए MAKV के लिए, तो ये सारा का सारा बजट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पोर्टलेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो सागरमाला के तहत एक और पिलर माना जाता है, जिसमें इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कोस्टल इको जोन, कोस्टल इको यूनिट्स एंड साथ में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनेंगे, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई जाएंगी, और पोर्ट कनेक्टिविटी जो थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था कि कैसे की जाए, तो अभी जिक्र में यही आया कि इनलैंड वाटरवेज के थ्रू समझिए पोर्ट कनेक्टिविटी हो रही है, समझिए आपका जो नेशनल वाटरवे 1 बन रहा है जो वाराणसी और अलिया को कनेक्ट कर रहा है, तो हिंटरलैंड जो इंडिया की है वो उनको एक जिसे बोलते हैं उनका दरवाजा खुल गया है समुद्री रास्ते के लिए, क्योंकि इनलैंड वाटरवेज बननी शुरू हो गई हैं। और वैसे ही अगर आप देखे हैं कुछ दिन पहले एक ट्रायल रन हुआ था एक वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर का, जिसमें एक कंटेनर ट्रेन चलाई गई थी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से लेकर बड़ोदरा तक। तो अभी आप देखें कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट में हिंदुस्तान ने जो पहला कदम लिया है, पहला देश है।

0: जिसने एक बिजली की जो ट्रेन है उसमें डबल डेकर कंटेनर सिस्टम अपनाया है, बाकी पूरे दुनिया में सिंगल कंटेनर सिस्टम जाते हैं, मतलब एक के ऊपर एक दो कंटेनर नहीं रखे जाते हैं। तो ये जो ट्रेन गई है करीब मेरे को लगता है 300-350 कंटेनर यूनिट से लेके गई थी, काफी लंबी ट्रेन थी ये, और ये एक पायलट प्रोजेक्ट माना जा सकता है। और ये सारी चीजें इन तीन प्रोग्राम्स के तहत हो रही है। और अगर आप देखेंगे कि अपनी जो लोकल सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनकी जानकारी के लिए मैरिटाइम कॉम्प्लेक्स बन रहा है,
1: बिल्कुल
0: सागर खेडू जो सर्वांगी विकास योजना थी गुजरात की, वो एक मॉडल था, उसके हिसाब से पूरे देश में वो मॉडल अभी अडॉप्ट हो रहा है किसी ना किसी स्कीम में। और उसके बाद में जो पोर्ट्स बन रहे हैं, बड़े बड़े पोर्ट्स बन रहे हैं, इनफैक्ट विंजम पोर्ट है, लेकिन अगर आप वाधवान पोर्ट देखें महाराष्ट्र में जो बन रहा है, वो एक और पोर्ट है, गलातिया बे का जो पोर्ट है अभी, वो तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोर्ट माना जाएगा जो अंडमान में बना रही है, जो करीब करीब सिर्फ 40 मील है मलाका स्टेट से।
1: जी,
0: तो आप देखिए कि आप कैसे पूरा देश में हर जगह पे पूरी देश की पूरी जो लैंडमास है वो कवर हो रहा है, जो भूमि है देश की सब जगह कहीं ना कहीं मैरीटाइम डेवलपमेंट हो रही है, चौमुखी विकास लग रहा है।
1: जी बिल्कुल, कॉमोडोर जोशी, प्रोफेसर मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारी समुद्री अर्थव्यवस्था के समग्र विकास से देश के आर्थिक सशक्तिकरण पर प्रकाश डालने के लिए।
2: धन्यवाद
0: जी, शुक्रिया।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 27वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, समुद्र, बंदरगाह और नई आर्थिक शक्ति। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक कोमोडोर केडी जोशी और रणनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर राहुल मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद।

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल है। आप इसे डिजिटल मोड पर भी सुन सकते हैं। फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दर्पण पूनम के संग। दर्पण के अंतर्गत एक नज़र और एक नज़र के अंतर्गत फिलहाल मैं बात करने वाली हूँ चंद्र घंटा के बारे में। नवरात्रि के पावन पर्व के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्र घंटा की उपासना की जाती है। देवी का यह नाम उनके मस्तक पर घंटे के आकार के अर्धचंद्र के सुशोभित होने के कारण पड़ा है। उनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और दिव्य है। माता के 10 हाथ हैं जिनमें वे त्रिशूल, गदा, तलवार, कमंडल और धनुष बाण लेकर अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। उनका वाहन सिंह है और हमेशा युद्ध की मुद्रा में बुराइयों का नाश करने के लिए तत्पर रहती हैं। सिंह पर सवार माता चंद्र घंटा का यह रूप परम शांति, कल्याण और वीरता का प्रतीक है। उनकी कृपा से भक्तों के सभी प्रकार के भय, कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं तथा उन्हें अलौकिक शक्ति और आत्मबल की प्राप्ति होती है। सात बजकर 47 मिनट फिलहाल वक्त है फिर छिड़ी बात का।

गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आवाजें मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले, और फिल्म का नाम सुहाग। फिलहाल 7:54 और वक्त एक और खूबसूरत नगमे का, सुनते रहिए, साथ रहिए, और इसी के साथ पूनम को दीजिए आज के लिए आज्ञा। नमस्कार।

0: আকাশবাণী কলকাতা, পরবর্তী অনুষ্ঠান একটু পরে।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সে সমাচার সন্ধ্যা কে সাথ মে বিশাল শর্মা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मंत्रिपरिषद और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। भारत ने दोहराया, लद्दाख देश का अभिन्न अंग, चीन के इंकार से ये तथ्य नहीं बदलेगा। व्यक्ति से व्यापारी चुनिंदा लेनदेन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिवाली के बाद लागू होगा। घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% से अधिक की तेजी, सेंसेक्स 73,034 पर हुआ बंद। और आनंद कुमार वेल कुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच आज सौहार्दपूर्ण और सार्थक बातचीत हुई। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटूर ने प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच बेहतरीन तालमेल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की भारत यात्रा पर श्री कुटूर ने दोनों देशों के नेताओं के बीच हालिया मुलाकातों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
2: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
1: प्रधानमंत्री ने भारत में ब्लूमबर्ग के 30 वर्ष पूरे होने पर उसे बधाई दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी केंद्रीय बजट की तैयारियों के दौरान सरकार दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर हटाने के सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार है। श्रीमती सीतारामन ने आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम के दौरान अपने संबोधन में ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने आज कहा कि बिम्स्टेक देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस क्षेत्र का कोई भी हिस्सा आतंकवादी नेटवर्क को पनाह लेने, सदस्य बनाने, ट्रेनिंग लेने, फंड जुटाने

0: या पड़ोसी देशों के खिलाफ गतिविधियां करने का अवसर न दे। नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। गृह मंत्री ने बिम्स्टेक देशों के बीच सहयोग के 5 अहम क्षेत्रों पर बल दिया, जिनमें ड्रग्स पर नियंत्रण, आतंकवाद रोधी और कानूनी सहयोग, भागे हुए अपराधियों की वापसी, साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की जांच तथा संस्थागत सहयोग और क्षमता निर्माण शामिल हैं। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में डॉ. मुरुगन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का सफर उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है।
1: I want to strengthen my party to Tamil Nadu.
2: मैं तमिलनाडु में पार्टी को मजबूत करना चाहता हूं और 2029 के चुनाव की तैयारी के लिए जमीन तैयार करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने हमेशा तमिल गौरव को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया है। मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि मुझे मंत्री पद से मुक्त कर तमिलनाडु भेजा जाए ताकि मैं वहां पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर सकूं।
1: To strengthen the party.
0: डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि मंत्रिपरिषद में पिछले 5 वर्षों के दौरान उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के धैर्य, करुणा और असाधारण समर्पण को करीब से देखने का अवसर मिला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने दोहराया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन द्वारा किसी भी प्रकार का इंकार इस स्थापित तथ्य को बदल नहीं सकता है।
2: लद्दाख पर चीन की हालिया टिप्पणियों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में स्पष्ट है। विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों की पहचान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र में मानक स्थान और भौगोलिक विशेषताओं के नामों के साथ की गई है। ये कार्य लद्दाख प्रशासन और स्थानीय पक्षों के परामर्श से किया गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि इन स्थानों को आधिकारिक मानचित्र में दर्ज करने का उद्देश्य उनकी सटीक पहचान सुनिश्चित करना और आम लोगों में उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हावलीचेक से मुलाकात की। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वावधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और चेक गणराज्य के बीच साझेदारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित है।
3: भारत और चेक गणराज्य के बीच आपसी सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिए प्रतिबद्धता पर आधारित गहरे और पुराने संबंध हैं। बदलते समय के साथ भी हमारी ये दोस्ती कायम रही है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की भी अपार संभावनाएं हैं।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की आवश्यकता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर युवा संवाद में श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है, वहां पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है।
2: जो भी समाज नशे की गिरफ्त में आता है, वहाँ एक पूरी पीढ़ी के बर्बाद होने का खतरा पैदा हो जाता है। अगर हम अपने समाज को नशे से मुक्त करने में सफल नहीं होते, तो विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में हमारे सामने एक बड़ी चुनौती होगी।
1: प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मास्टर प्लान की शुरुआत वर्ष 2021 में आज ही के दिन देश के बुनियादी ढांचे के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से की गई थी।
4: पिछले 5 वर्षों में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक एकीकृत डिजिटल नियोजन मंच से विकसित होकर एक व्यापक भूस्थानिक नियोजन प्रणाली बन गया है, जो अवसंरचना, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के विकास में सहयोग कर रहा है। इसने जीआईएस आधारित मंच के माध्यम से विभिन्न मंत्र

0: कार्यालयों, राज्यों और अवसंरचना नेटवर्क को एक साथ जोड़ा है। आज पीएम गतिशक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 1800 से अधिक डेटा लेयर एकीकृत हैं, जिनमें 58 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। पीएम गतिशक्ति के सिद्धांतों के आधार पर इस मंच पर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली लगभग 400 अवसंरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा चुका है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि जीएसटी परिषद जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे अमल में लाया जा रहा है।
2: 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी देश में कर व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके तहत केंद्र और राज्यों के कई करों को एक ही कर व्यवस्था में शामिल किया गया। इससे एक देश एक कर की अवधारणा को बढ़ावा मिला। जीएसटी परिषद के प्रस्तावों का उद्देश्य जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक आसान, पारदर्शी और करदाताओं के अनुकूल बनाना है। पिछले साल जीएसटी में किए गए नए सुधारों के तहत जीएसटी परिषद ने 4 कर दरों 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की जगह अब केवल 2 मुख्य दरें 5 और 18 प्रतिशत कर दी गई है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी के माध्यम से सरकार ने करों की जटिल व्यवस्था को आसान कर दिया है।
3: जीएसटी के जरिए हमने टैक्सेस के एक कॉम्प्लेक्स वेब को नेशनल मार्केट में बदला है। बिजनेस से जुड़े सैकड़ों छोटी मोटी गलतियों को डिक्रिमिनलाइज किया गया है और भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है।
2: नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 58वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि परिषद ने जीएसटी के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान को हटाने की सिफारिश की है।
4: परिषद ने जीएसटी के अंतर्गत गिरफ्तारी के अधिकार को समाप्त करने की सिफारिश की है। इसके अलावा परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने का भी सुझाव दिया है। इसका मतलब है कि 5 करोड़ रुपए से कम की राशि के मामलों में अभियोजन नहीं चलाया जाएगा।
2: पिछले 9 वर्षों में कर प्रक्रिया को आसान बनाने और कर दरों में बदलाव से कामकाज में पारदर्शिता बढ़ी है और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को भी मजबूती मिली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देशहित और जनहित में अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी है और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ हो उसको कोई राजनीतिक लाभ कभी भी देने का प्रयास नहीं किया।
1: यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीए ने बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए आज ये निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। व्यक्ति से व्यक्ति के बीच सभी यूपीआई लेनदेन निशुल्क रहेंगे। एमडीआर शुल्क केवल 2000 रुपए से अधिक के ग्राहक से व्यापारी के बीच लेनदेन पर लागू होगा। व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी श्रेणी के अंतर्गत यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से प्रति माह 1 लाख रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वालों को पहले की तरह लेन देन पर कोई एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
6: घरेलू शेयर बाजार आज 1.5% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1109 अंक चढ़कर 73,034 पर पहुंच गया। निफ्टी 359 अंक का उछाल दर्ज करता हुआ 22,722 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 50 पैसे की मजबूती के साथ 95 रुपए 28 पैसे पर बंद हुआ।
1: सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और हवाई हमले की स्थिति के दौरान घरों में रहने की सलाह दी है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने

भारतीय समुदाय की सहायता के लिए 24 घंटे सक्रिय नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। भारतीय नागरिकों को एयरलाइंस के संपर्क में रहने और उड़ानों की ताजा जानकारी लेने की सलाह दी गई है। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने प्रागवे में विश्व स्केटिंग गेम्स में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 23 वर्षीय स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मंत्रिपरिषद और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। भारत ने दोहराया, लद्दाख देश का अभिन्न अंग, चीन के इंकार से ये तथ्य नहीं बदलेगा। व्यक्ति से व्यापारी चुनिंदा लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिवाली के बाद लागू होगा। घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% से अधिक की तेजी, सेंसेक्स 73,034 पर हुआ बंद। और आनंद कुमार वेलकुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: man kann.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए कृषि उत्पादकता को मजबूत करती प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
2: एसपी सिंह जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: ये धन्यवाद।
2: एसपी जी, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की गई किसानों की मदद के लिए, किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए और उनके रोजगार के अवसर बढ़े, उनकी आमदनी बढ़े, इसलिए तमाम लक्ष्य निर्धारित किए गए। लेकिन अगर बेसिक तौर पर समझना चाहे तो किन किन मुख्य उद्देश्यों को लेकर के इस योजना की शुरुआत की गई थी?
3: प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का जो मूल उद्देश्य है या जो सोच के किया गया, उसमें ये मान के चला गया कि देश के उन जिलों में जहां पर कृषि उत्पादकता बहुत कम है और वहाँ पे फसलों की जो सघनता कह सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, खेती के लिए किसानों को कर्ज कम मिलता है, ऐसी जगहों पे जहाँ खेती बहुत बुरे हाल में थी कह सकते हैं, या बहुत न्यूनतम वहाँ की उत्पादकता थी और वहाँ के किसानों की बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, उनको कर्ज नहीं मिलता था, उनके खेती करने का तौर तरीका उनके पास वैज्ञानिक तरीके नहीं थे, इन सबको कैसे ठीक किया जाए, ऐसे 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यानी आकांक्षी जिलों को चिन्हित किया गया और जो 100 जिले चुने गए उनमें लगभग देश के सभी राज्यों के जिलों को शामिल किया गया है। इस योजना को संचालित करने के लिए 11 मंत्रालयों और विभागों की केंद्रीय की 36 योजनाएं, और जिसमें राज्य की भी योजनाएं शामिल है और निजी क्षेत्र की भागीदारी भी है, यानी जो निजी क्षेत्र, राज्य की योजनाएं और केंद्र की योजनाएं, मंत्रालयों, विभागों, सारी योजनाएं जो किसानों को संबल प्रदान करती हैं, जो उनकी खेती को अच्छी बना सकती हैं, उनको लेकर के एक ऐसी योजना तैयार की गई ताकि वहां की उत्पादकता बढ़े, वहां के किसानों की स्थिति में कैसे सुधार हो सकता है। सबसे बड़े जोर दिया गया कि फसलों की उत्पादकता यानी उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, यील्ड कैसे बढ़े, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े। दूसरी चीज दी गई कि फसलों में विविधीकरण, वहां पे कौन सी फसल बोई जाए इसका पता होना चाहिए वैज्ञानिक तरीके से। इसका पता लगाने के लिए सबसे जरूरी होता है कि वहां की मिट्टी की जांच की गई और वह स्टेट या वह डिस्ट्रिक्ट या वह क्षेत्र किस क्लाइमेटिक जोन में है, यानी वहां क्लाइमेट की ही फसल की खेती को किया जाए। तीसरा था कि क्या सिंचाई की सुविधा वहां है या नहीं है, तो दोनों स्थितियों का आकलन किया गया। उसके अलावा किया गया कि जो वहां उत्पादन होता है वहां पर भंडारण की, गोदामों की उपलब्धता है या नहीं है, क्योंकि देखा गया कि जो तमाम ऐसे डिस्ट्रिक्ट हमारे देश में है जहां उत्पादन तो हुआ लेकिन भंडारण की सुविधा नहीं है। आफ्टर जो हार्वेस्टिंग होता है, पोस्ट हार्वेस्ट को बोलते हैं, जो खेत से खलिहान तक आने में जो फसलों का नुकसान हो जाता है वो बहुत बड़े स्तर पर होता था, 30-35% तक नुकसान हो जाता था पूरी फसल का। ऐसे में फसलों का नुकसान न हो और उसके अलावा किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराना, क्योंकि माइक्रो फाइनेंसिंग या जो सरकारी फाइनेंसिंग बैंकों के थ्रू होती है उन तक पहुंच नहीं पाती है। इस तरह के डेटा पहले जुटाए गए और चिन्हित जब किया गया इन डिस्ट्रिक्ट को, इन जिलों के चिन्हित करने से पहले वहां के एक एक छोटे छोटे डेटा यानी जो आंकड़े वहां जुटाए गए कि यहां पर स्थितियां क्या है, कौन सी खेती होती है, कितने आय वर्ग के लोग हैं, कितने आमदनी होती है, कितना कुल उत्पादन होता है, सिंचाई का रकबा कितना है, कौन सी फसलों की खेती की जा सकती है और किसकी खेती हो रही है, तो इन सब चीजों का आकलन करने के बाद वैज्ञानिक तरीके से खेती को कैसे किया जाए, इसके लिए युवा कृषि वैज्ञानिकों को और जो बहुत कुशल टाइप के

0: जो कृषि के अधिकारी थे उनकी ड्यूटी ऐसे जिलों में तैनात की गई, उनको लगाया गया ताकि वहां के किसानों को हर घड़ी वैज्ञानिक खेती के तौर तरीके मिले जिससे वो अच्छी खेती करें और उनका आमदनी बढ़े।
1: एसपी जी, 11 मंत्रालयों और विभागों के 36 केंद्रीय योजनाओं को राज्य की योजनाओं के साथ जोड़ा गया है और ये हम भली भांति परिचित है कि प्रत्येक राज्य की स्थिति अलग है, तो ऐसे में प्रशासनिक ढांचे के साथ साथ इन बातों को ध्यान में रखना भी जरूरी होता है कि स्थिति के हिसाब से धन का आवंटन हो, जवाबदेही भी एक बड़ा मुद्दा होता है इसमें, और समय पर काम पूरा हो, इसके लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं?
0: मैंने पहले ही कहा था कि जो वहाँ पे गवर्नेंस के लिए जो अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, ऐसे कुशल वैज्ञानिकों की, ऐसे कुशल लोगों की बैंकिंग में क्षेत्र में, इन सारे लोगों को एक ऐसी कमेटी बनाई गई, सतर्कता की कमेटी की बनाई गई और इसकी पूरी निगरानी के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और स्टेट लेवल पर ऐसी निगरानी कमेटियां बनाई गई जो लगातार इन चीजों का आकलन करती रही कि जो ये काम हो रहा है उनको ये सब चीजें उपलब्ध हो रही हैं, जो सरकार सोच रही है योजनाओं में जो चीजें बनाई गई हैं उन तक पहुंच रही हैं कि नहीं। समीक्षा और निगरानी के लिए राज्य, जिला और राष्ट्रीय स्तर पर समितियां बनाई गई हैं और ये समितियां लगातार इन चीजों का आकलन करती हैं और समीक्षा करती हैं कि कहीं से कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, ये जो सुविधाएं जिन किसानों को खेती को मिलना चाहिए वो मिल रही है या नहीं मिल रही है।
1: एसपी जी, अभी अगर हम इस चीज को देखेंगे किसानों की बेसिक नीड्स क्या होती है, तो उन्हें इस दिशा में सहायता मिलती रहे लगातार, और बहुत सारे किसान भाई ऐसे भी होते हैं जिनके पास जानकारी नहीं होती है, उनको किस तरह से मदद पहुंचाई जा रही है?
0: देश के ऐसे जिलों में जिनकी हम बात कर रहे हैं वो बेहद पिछड़े हुए और वहाँ पे जानकारी का अभाव नहीं था या नहीं है कह सकते हैं, ऐसे में जो ये योजना बनाई गई 6 साल की योजना है, 2025-26 में लागू की गई है, 2030-31 तक चलेगी, 1,44,000 करोड़ यानी 1.5 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया जाएगा ऐसे 100 जिलों में। यह अपने आप में एक बहुत अनूठी टाइप की योजना है जिसमें करीब 2.25 करोड़ किसानों को, और इनमें उन किसानों को लिया जाएगा जो छोटे किसान या सीमांत किसान यानी मझोले या छोटे किसानों को ही इसका लाभ देने की बात है। हमारे किसान कितने कैपेबल हैं, कितने जानकार हैं, कितने दृढ़ प्रतिज्ञ हैं अपनी खेती को लेके, अपने तैयारी के लिए, ऐसे में प्रधानमंत्री ने सबसे पहली योजना शुरू की कि हर किसान के खेत की मिट्टी की जांच की जाए, यानी उस मिट्टी में कौन कौन से तत्व हैं ताकि ऐसी खाद का या ऐसे चीजों का प्रयोग न किया जाए जिससे खेती खराब होती है, और कौन सी ऐसी खाद दी जाए जिसकी कमी है सिर्फ उतनी ही खाद देने से, यानी न्यूनतम खाद देने पर बेहतर बीज और मिट्टी हो और इसके अलावा उनको सिंचाई की सुविधा दी जाए। हमें लगता है कि ये सुविधा सरकार ने, बेसिक सुविधा होती है किसानों को जो यहाँ के किसानों को तो दी ही जा रही है, इसके अलावा अतिरिक्त तौर पर पीएम धन धान कृषि योजना के तहत ऐसे किसानों को मतलब उन्नतशील बीज और जो उनके खेतों की या उनकी फसल की जरूरत के हिसाब से कौन सी खाद फर्टिलाइजर यूज की जाए ये इसका उपयोग, और उनकी फसल की देख रेख के लिए कोई उसमें रोग तो नहीं लग रहा है इसका भी बाकायदा कृषि वैज्ञानिक जाके उसका निरीक्षण करते हैं और इस बात का पता लगाते हैं कि कौन सा पेस्टिसाइड यूज करके इनको रोका जा सकता है। दूसरा है कि सिंचाई की सुविधा कितनी है, और सिंचाई की अगर सुविधा बेहतर नहीं है तो आज की तारीख में भारत सरकार ने एक ऐसी योजना चला रखी है, प्रधानमंत्री का एक नारा था अभी कह सकते हैं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी एक एक बूंद से ज्यादा उत्पादन लेना, यानी ड्रिप सिंचाई योजना, स्प्रिंकल सिंचाई योजना, ऐसी योजनाओं को सरकार किसानों को सब्सिडी के आधार पर, समझिए 90% सरकार देती है और 10% किसान लगाता है, और ऐसे 100 जिलों में जो योजना में ये लाभ शायद 100% ही दिया जा रहा है सरकार की ओर से, हर किसान तक, हर खेत तक अच्छी सिंचाई की सुविधा मिल जाए ताकि उसकी खेती के लिए सिंचाई यानी पानी की कोई कमी न हो, अच्छी फसल पैदा करने के जितने भी होते हैं। तीसरी बात, आपने एक बात पूछी कि कृषि यंत्रों और जो उनको टेक्नोलॉजी खेती में यूज होती है कैसे उपलब्ध इनको कराया जाए, इसके लिए सरकार ने 2026 में एक योजना शुरू की है, कृषि यंत्रों की अनुदान देने की प्रक्रिया 2026 और 27 इसी साल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पहले चरण में शुरू कर दी गई है। इस प्रक्रिया के तहत किसान जो भी चिन्हित जिले हैं उन जिलों के जो किसान हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और उनको अनुदान देने की प्रक्रिया शुरुआत कर दी गई है।
1: एसपी जी, प्रधानमंत्री जी का ये एक मुख्य लक्ष्य रहा है, एक तरह से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में महिलाओं और युवा किसानों की भागीदारी बढ़े, तो महिला किसानों, कृषि उद्यमियों और खेती में जो नए नए प्रयोग करने वाले युवा हैं वो किस तरह से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, वित्तीय व्यवस्था उनके लिए क्या हो सकती है, और आधुनिक तकनीक जो उनको उपलब्ध कराई जा सकती है, इन तमाम बातों पर रोशनी डालिए, हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: महिला जो किसान है और उद्यमी है, जो एग्रीकल्चर से जुड़े उद्यम में

0: हाथ आजमाना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं, सरकार इसके लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराती है और देश के सारे जिलों में यह सुविधा उपलब्ध है। महिला उद्यमी और युवा उद्यमियों के लिए विशेष तौर पर लाभ दिया जा रहा है ताकि गांवों से जो लोगों का पलायन शहरों की ओर हो रहा था क्योंकि रोजी रोजगार नहीं थे गाँव में, ऐसे में खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने और खेती के साथ जुड़े जो उद्यम होते हैं, एग्री बिजनेस जिसको कहते हैं या फूड प्रोसेसिंग जिसे कहते हैं, ऐसे छोटे छोटे इंडस्ट्री लगाने की सुविधा सरकार की ओर से दी जा रही है और ऐसे में उद्यमी आगे आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, ढेर सारे स्टार्टअप देश भर में खुल रहे हैं। किसानों की सुविधा देने के लिए जो डिजिटल सुविधाएं दी जाती हैं वह भी युवा उद्यमी अपने स्टार्टअप के माध्यम से किसानों तक पहुंचा रहे हैं और तमाम ऐसे स्टार्टअप हैं जो मुफ्त में सूचनाएं देते हैं किसानों को। सरकार की ओर से देखिए किसान को यहां तक सुविधा दी जाती है कि हर सप्ताह उसे यह सूचना दी जाती है कि मौसम में कैसा बदलाव आने वाला है, मौसम कैसा रहेगा, इसके अलावा उनकी फसल किस तरह की तैयार हो गई, अगर उनकी फसल में किसी भी तरह की कीड़े लगने या रोग लगने की कोई आशंका हो तो अपने फोन पर या जो आपके पड़ोस का है, आपके पंचायत में जो CSC खुला हुआ है सामुदायिक केंद्र, वहां से आप अपनी सूचनाएं दे सकते हैं, अपलोड करा सकते हैं या आपके पास मोबाइल फोन है उस पर ये डाल सकते हैं सूचना कि ये मुश्किलें पैदा हो रही हैं। ये सारी सुविधाओं का लाभ घर बैठे किसान को उसके खेत पर उपलब्ध हो जाता है और खासतौर से जो चिन्हित धन धान कृषि योजना के तहत जो डिस्ट्रिक्ट के किसान हैं उनके लिए विशेष सुविधा दी गई है कि उन्हें अगर किसी भी तरह का मौसम में परिवर्तन होता है तो उस ब्लॉक के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए CDO या DDO या जो बैठे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिला कृषि अधिकारियों को ये पहले से निर्देश रहता है कि किसानों को जागरूक बनाएं रोज और उन्हें सूचना दें कि कब क्या सूचना देनी है और कब कैसे उससे अपने फसलों के बचाव कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए उनकी फसल का पैदावार अच्छी खासी हो जाती है तो अब वो अपनी फसल को लगाएं और जब तैयार खलिहान में आ जाती है या घर में आ जाती है तो उसे वो बाजार तक कैसे ले जाएं और किन बाजारों में ले जाएं और कहां रखें। तो भारत सरकार की एक योजना है बहुत बड़ी जिसको चला रहा है सहकारिता मंत्रालय। सोचिए इस देश में दुनिया की सबसे बड़ी योजना चली है प्रधानमंत्री अन्न भंडारण योजना, जो हर पैक्स में जितने भी न्याय पंचायतें, ग्राम पंचायतें या ग्राम सभाएं हैं उनके मार्फत पैक्स जो होता है, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं, उन्हें यह सुविधा दी गई है, सरकार की ओर से मदद दी जा रही है कि हर गांव में गोदाम बनाए जाएं। इससे भारत सरकार की बहुत बड़ी सब्सिडी की बचत होती है क्योंकि अनाज एक बार खरीदती है सरकार, फिर कहीं दूर ले जाके गोदाम में उसे रखा जाता है, फिर वहां से लाया जाता है, तो लाने ले जाने लादने उतारने तो लॉजिस्टिक और इसमें जितना खर्चा होता है वो सारा बचत होगी।
1: SP जी, एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने तमाम बातें बताई हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो FPOs हैं यानी कि किसान उत्पादक संगठन, उनकी भी बड़ी भूमिका इसमें रहती है कि वो भी काफी मदद पहुंचाते हैं किसान भाइयों को, तो इनके बारे में किस तरह से मदद इनसे ली जा सकती है, कैसे उनका लाभ उठाया जा सकता है और क्या उनका आज के समय में रोल है खासतौर पे इस योजना के संदर्भ में?
0: देखिए मैं इसी योजना के संदर्भ में एक बात बताऊंगा आपको कि FPO का इस योजना के साथ एक संगम हुआ था 15 राज्यों और 33 जिलों के करीब 72 से ज्यादा जिसमें FPO शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में उत्पादकता, बाजार तक पहुंच, आय बढ़ाने से जुड़े अनुभव साझा किए गए जिसमें प्राकृतिक तिलहन, दलहन, मधुमक्खी पालन, संरक्षित खेती, सूक्ष्म सिंचाई, संस्थागत कैसे लोगों को कर्ज मिले और डिजिटल खेती जैसे विषयों पर चर्चा की गई थी। और देखिए FPO है क्या, छोटे छोटे किसानों का एक संगठन बना गया, एक समूह है, एक संकुल है और इनकी जो समूह है मिलकर एक पूरा समूह बना लेते हैं और सारे छोटे छोटे खेतों को बड़े खेत बना दिए जाते हैं। उसके मायने यह होते हैं उसमें आप बड़ी टेक्नोलॉजी के बड़े जो यंत्र हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। हार्वेस्टर हुआ, जब हार्वेस्ट करने की बारी आती है तो बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं तो उन बड़ी मशीनों का संचालन छोटे खेतों में नहीं हो पाती। तो FPO के गठन के साथ ही किसानों को एक ताकत दी गई कि वो जब मान लीजिए बाजार से कोई इनपुट खरीदना हो, जैसे बीज लेना हो, फर्टिलाइजर लेना हो, पेस्टिसाइड लेना हो या अपना माल बाहर बेचना हो, ऐसी दशा में किसान व्यापारी से जो मोल भाव करता है वो बार्गेनिंग पावर किसान को बहुत कम होती है, उसके पास क्षमता नहीं होती अपने अनाज को रोकने की या किसी इनपुट की खरीदने में। लेकिन जब सामने वाली पार्टी को पता लगता है, इफको, क्रिप्को या बड़ी कंपनी को पता लगता है कि इनको तो कम से कम 3 ट्रक फर्टिलाइजर की जरूरत है, 2 ट्रक इनको अब सीड की जरूरत है, ये इतने बल्क में खरीदेंगे, भारी मात्रा में खरीदेंगे, तो वो मोल तोल कर लेते हैं, तो जो चीज महंगी बिकने वाली होती है उसे सस्ती में खरीद हो जाती है। इससे ये होता है कि लागत कम आती है और बेचते समय मोल भाव करके भाव बढ़ाकर बेचते हैं, किसी कंपनी को बेचते हैं तो ऐसे में किसान को फायदा होता है, यानी FPO का फायदा हुआ तो किसान का फायदा हुआ क्योंकि FPO उसका

0: है, किसान उसका हिस्सा है, तो किसान का जब हिस्सा है एफपीओ में, उस संगठन में, तो जब एफपीओ को फायदा होगा तो किसान को फायदा होगा।
1: एसपी जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।
2: अभी आप सुन रहे थे कृषि उत्पादकता को मजबूत करती प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: मंथन।

0: জানিয়েছেন। দেশের নিরাপত্তা পরিষদের সঙ্গে এক জরুরি বৈঠকে রাদেব বলেছেন, রিয়ালা শহর থেকে 18 নটিক্যাল মাইল পূর্বে একটি জাহাজ ড্রোন আক্রমণের শিকার হয়। প্যারাগুয়ের আসুনসিয়নে আয়োজিত বিশ্ব স্কেট গেমস 2026 পুরুষদের 500 মিটার স্প্রিন্টে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন ভারতের আনন্দ কুমার ভেলকুমার। তামিলনাড়ুর 23 বছর বয়সী স্পিড স্কেটার 40.856 সেকেন্ড সময় নিয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। উল্লেখ্য, গত বছর বিশ্ব স্পিড স্কেটিং চ্যাম্পিয়নশিপে তিনি 500 মিটারে ব্রোঞ্জ এবং 1000 মিটার ও ম্যারাথনে সোনা জিতেছিলেন। সল্টলেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আজ সন্ধ্যায় এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লীগ 2 এর ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল 2-3 গোলে ইরাকের ক্লাব আল সোর্তার কাছে পরাজিত হয়েছে। বিরতিতে ইস্টবেঙ্গল 2-1 গোলে এগিয়ে ছিল। শেষ করার আগে খবরের বিশেষ কিছু অংশ আরও একবার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি দুটি দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও জোরদার করতে সম্মত হয়েছেন। তথ্য সম্প্রচার এবং সংসদীয় বিষয়ক
1: নমস্কার, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अमन यादव। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत। भारत ने दोहराया, लद्दाख देश का अभिन्न अंग, चीन के इनकार से तथ्य नहीं बदलेगा। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए नया परामर्श जारी किया। खैबर पख्तूनख्वा में आपातकाल लागू करने पर पाकिस्तानी सरकार की निंदा। और आनंद कुमार विलकुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच आज सौहार्दपूर्ण और सार्थक बातचीत हुई। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच बेहतरीन तालमेल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की भारत यात्रा पर श्री कुटूर ने दोनों देशों के नेताओं के बीच हालिया मुलाकातों के बारे में बात की, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और अनीता आनंद के बीच हुई बैठकें भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाए हैं। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत का आर्थिक विकास एक मजबूत नींव पर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है।
2: भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं। करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं। 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं। हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
2: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर। पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
1: प्रधानमंत्री ने भारत में ब्लूमबर्ग के 30 वर्ष होने पर उन्हें बधाई दी और भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने पर बल दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आगामी केंद्रीय बजट की तैयारियों के दौरान सरकार दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर हटाने के सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार है। श्रीमती सीतारमण ने आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम के दौरान अपने संबोधन में यह बात कही। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत और विदेशों के निवेशक पूंजीगत लाभ पर कर और प्रतिभूति लेनदेन कर सहित विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों पर लगने वाले करों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कल्याणकारी योजनाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे प्रमुख क्षेत्रों में खर्च को सुरक्षित रखते हुए वित्तीय अनुशासन बनाए रखेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिम्स्टेक देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस क्षेत्र का कोई

0: भी हिस्सा आतंकवादी नेटवर्क को पनाह लेने, सदस्य बनाने, ट्रेनिंग लेने, फंड जुटाने या पड़ोसी देशों के खिलाफ गतिविधियां करने का अवसर न दे। नई दिल्ली में आज बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। श्री शाह ने कहा कि बिम्स्टेक क्षेत्र एकीकरण, आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक जरूरी मंच बन गया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रियों के तौर पर उनकी यह जिम्मेदारी है कि वे बिम्स्टेक को समावेशी विकास और सुरक्षा का मॉडल बनाएं। गृह मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, सीमा पार संगठित अपराध और अवैध ड्रग्स तस्करी जैसी चुनौतियों में से निपटने में सहयोग के लिए बिम्स्टेक कन्वेंशन को पूरी तरह लागू करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई।
1: आतंकवादियों, उनके सहायकों, आपराधिक नेटवर्क, वित्तीय चैनल और सीमा पार गतिविधियों पर सत्यापित तथा कार्रवाई योग्य सूचना का समय पर आदान प्रदान हमारी सामूहिक सुरक्षा को मजबूत कर सकता है।
0: भारत ने कहा है कि आतंकवादियों द्वारा किए गए अपराधों और अत्याचारों को निर्धारित कानूनी मानदंडों पर खरा उतरने की स्थिति में मानवता के विरुद्ध अपराधों के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति के 81वें सत्र में भारत का पक्ष रखते हुए काउंसलर आर मिथिली ने कहा कि ऐसे कृत्यों के लोगों पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। भारत ने कहा कि मानवता के विरुद्ध अपराधों पर कोई नया बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता मौजूदा कानूनी व्यवस्थाओं का पूर्ण हो चाहिए, न उनकी पुनरावृत्ति। भारत ने इस बात पर बल दिया कि गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों और बड़े पैमाने पर किए गए अत्याचारों के मामलों में न्याय सुनिश्चित करना और दोषियों को जवाबदेह ठहराना देशों की जिम्मेदारी है। यह कार्रवाई उनके राष्ट्र कानूनों के अनुरूप होनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हाविलचिक से मुलाकात की। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वाधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित है।
2: भारत और चेक गणराज्य के बीच आपसी सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिए प्रतिबद्धता पर आधारित गहरे और पुराने संबंध हैं। बदलते समय के साथ भी हमारी ये दोस्ती कायम रही है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की भी अपार संभावनाएं हैं।
0: भारत ने दोहराया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन द्वारा किसी भी प्रकार का इनकार स्थापित तथ्य को नहीं बदल सकता है।
3: लद्दाख पर चीन की हालिया टिप्पणियों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में स्पष्ट है। विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों की पहचान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र में मानक स्थान और भौगोलिक विशेषताओं के नामों के साथ की गई है। ये कार्य लद्दाख प्रशासन और स्थानीय पक्षों के परामर्श से किया गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि इन स्थानों को आधिकारिक मानचित्र में दर्ज करने का उद्देश्य उनकी सटीक पहचान सुनिश्चित करना और आम लोगों में उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और हवाई हमले की स्थिति के दौरान घरों में रहने की सलाह दी है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय समुदाय की सहायता के लिए 24 घंटे सक्रिय नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। भारतीय नागरिकों को एयरलाइंस के संपर्क में रहने और उड़ानों की ताज़ा जानकारी लेने की सलाह दी गई है। दूतावास ने कहा है कि 10 अक्टूबर को रियाद हवाई अड्डे पर हुए हमले में घायल भारतीय नागरिकों में 4 लोग अब भी आईसीयू में हैं और 4 सामान्य वार्ड में उपचार करा रहे हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। एक प्रमुख मानवाधिकार संगठन ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आपातकाल लागू करने के सरकार के फैसले की निंदा की है। संगठन ने इसे सेना के समर्थन से सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश जताया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार फाउंडेशन IHRF ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी और हिरासत में लिए गए अन्य नेताओं को रिहा करने की मांग की है। संगठन ने कहा कि सरकारी आदेशों के जरिए लोगों के अधिकारों को निलंबित नहीं कह सकता। IHRF का यह बयान खैबर पख्तूनख्वा में राज्यपाल शासन लागू किए जाने के बाद प्रांतीय सरकार के कई मंत्रिमंडल सदस्यों को हिरासत मिले जाने के बाद आया है। भारत के अनंत कुमार विलकुमार ने पैरागुए में आयोजित विश्व स्केटिंग गेम्स 2026 में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तमिलनाडु के 23 वर्ष स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में पोडियम पर स्थान हासिल किया। विलकुमार ने 2025 चैंपियनशिप में भी 500 मीटर में कांस्य और 1000 मीटर और मैराथन में स्वर्ण पदक जीता था, जिससे वे दो बार के विश्व चैंपियन बन गए हैं। भारतीय सलामी बल्ले

आज शेफाली वर्मा को सितंबर 2026 का आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वहीं भारतीय कप्तान शुभमन गिल को रिकॉर्ड 5वीं बार आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत। भारत ने दोहराया, लद्दाख देश का अभिन्न अंग, चीन के इनकार से तथ्य नहीं बदलेगा। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए नया परामर्श जारी किया। खैबर पख्तूनख्वा में आपातकाल लागू करने पर पाकिस्तानी सरकार की निंदा। और आनंद कुमार विलकुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Please stand by for the news from Delhi.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अमन यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच एक सार्थक वार्ता हुई। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटूर ने प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच बेहतरीन तालमेल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की भारत यात्रा पर श्री कुटूर ने दोनों देशों के नेताओं के बीच हालिया मुलाकातों के बारे में बात की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
2: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
1: नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक आज दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुई। नई दिल्ली के बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित इसके सभी रूपों की कड़ी निंदा की। घोषणा में सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक और निरंतर प्रयासों के जरिए रोकने, उसका मुकाबला करने और उसे समाप्त करने के अपने संकल्प को दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े सुरक्षित, संकटों का सामना करने में सक्षम, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में डॉ मुर्गन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का उनका सफर एक सौभाग्य है। गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि गुजरात में तीन नगर निकायों के चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की है। नई दिल्ली में संवाददाताओं में श्री शाह ने कहा कि दो नगर पालिकाओं और एक नगर निगम की कुल 104 सीट में से भाजपा ने 90 सीट जीती हैं। उन्होंने बताया कि उनके लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांधीनगर नगर निगम की 44 सीट से भाजपा को 38 सीट मिली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस को 41 वर्षों में भी एक चुनाव जीत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को SIR से जोड़कर खारिज करने की जगह कांग्रेस का आत्ममंथन करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आज शाम कोलकाता के कालीघाट स्थित उनके आवास के बाहर कथित तौर पर चाकू से हमला करने की कोशिश की गई। राज्यसभा सांसद डोला सेन के अनुसार तनिष्ठा साहा नाम की एक महिला ने कथित तौर पर ममता बनर्जी की साड़ी खींची और चाकू से उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की। फिलहाल महिला को हिरासत में लेकर कालीघाट पुलिस के हवाले कर दिया गया है। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने पैराग्वे में विश्व स्केटिंग गेम में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 23 वर्ष स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया। मौसम विभाग ने कल तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में तेज बारिश की बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा,

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद

कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।